FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे, उसके बाद आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पताल

0: वार्डों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर OFC कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं।
2: ये है विविध भारती।
1: वंदन वार।

साथियों सुनिए आज का चिंतन। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। ये था आज का चिंतन। और अब सुनिए वंदन वार में भक्ति रचनाएं।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। इसका भाग 236 प्रसारित किया जाएगा। सुबह 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर संगीत सरिता के अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका का भाग एक। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह है, संपादन सहायक झरना सोलंकी और प्रस्तुति अनुश्री पाठक। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम त्रिवेणी आप सुनते हैं सुबह 8:15 पर

और पुनः दोपहर 2 बजे। आज त्रिवेणी में आले की वंशवर है ममता सिंह का। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर और शाम को 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा संगीतकार सी अर्जुन पर। आले के वंशवर अशोक सोनावले का है ये कार्यक्रम। आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे। गीतकार शायर और लेखक शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का भाग 2 आज प्रसारित होगा। संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबीर खान। रंग तरंग कार्यक्रम सुबह 11 बजे, 12:05 पर यादू की महफिल और 1 बजे सुनिएगा सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनते हैं दोपहर बाद 2:30 पर। 3 बजे सुनिएगा सखी सहेली के अंतर्गत कुछ इन विषयों पर बातचीत। पारिवारिक चिकित्सक, साड़ियों का संसार, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे टसर या घीचा सिल्क साड़ी, झारखंड की मशहूर। शब्द हमारे विचार आपके में सुनिएगा प्रतियोगिता के बारे में और व्यंजन पकौड़े के बारे में बातचीत होगी। संवादक मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में आप सुनेंगे वरिष्ठ साहित्यकार हरिशंकर राठी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग 1। छाया गीत शाम 5 बजे, 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:30 पर आप फिर से सुनेंगे झरोखा और 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला आप सुनते हैं शाम 7 बजे, 7:45 पर आज इंद्रधनुष में राग अनुराग। 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका के अंतर्गत झलकी दिवा स्वप्न। मनुभाई देसाई का लेखन है, निर्देशक सत्येंद्र शरत। कार्यक्रम आपके लिए रात 9 बजे। 10 बजे छाया गीत आले के वंशवर मंदाकिनी जोशी का। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो ये थी रूपरेखा हमारे आज के कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का आज का अंक 236 आप सुनेंगे।

भरत के पीछे पीछे अयोध्या और जनकपुर से आए स्वजनों के विदा होने का करुण अवसर है। सबको विदा करने का अच्छा दिन है, ऐसा जानकर भी श्री राम को उनसे कुछ कह सकने में संकोच होता है। उपस्थित समाज उनके इस शील के सम्मुख नतमस्तक है। श्री राम की मनोदशा से भरत को अपने उद्गार निवेदित करने की प्रेरणा मिलती है। अग्रज ने उनकी हर रुचि को मान दिया है, किंतु भरत ये सोचकर व्यथित हैं कि उनके कारण श्री राम, लक्ष्मण तथा जनक नंदिनी ने कितने संताप और कष्ट सहे हैं। अतः अब वो आज्ञा मांगते हैं और जिस प्रकार के आचरण से उन्हें श्री राम के चरणों के दर्शन फिर प्राप्त हों, ऐसी सीख की याचना भी करते हैं।

नमस्कार श्रोताओ, भारतीय संगीत परंपरा में यदि किसी वाद्य को प्रकृति की सहजता, मानवीय संवेदनाओं की कोमलता और आत्मा की गहनतम अभिव्यक्ति का प्रतीक माना गया है तो वो है बांसुरी। बांसुरी केवल एक वाद्य नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना की अनंत धारा का मधुर स्वर है, श्वास का संगीत है। ये प्रकृति की निस्तब्धता को भी मधुर अभिव्यक्ति दे देती है। इसकी ध्वनि में कभी यमुना के तट पर गूंजती कृष्ण की दिव्य लीला का आह्वान सुनाई देता है तो कभी वन उपवनों में बहती समीर की मृदुल सरगम। बांसुरी की तान मानव हृदय के उन भावों को भी अभिव्यक्ति देती है जिन्हें शब्दों में बांध पाना संभव नहीं।

0: होता। इसकी ध्वनि में मिट्टी की सोंधी सुगंध और जनमानस की सरल भावनाएं समाहित रहती हैं। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से आरंभ हो रही है एक नई श्रृंखला। शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं, अपनी विलक्षण साधना और अद्भुत प्रस्तुति शैली के माध्यम से बांसुरी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। बांसुरी की

0: आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी। श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम नई श्रृंखला का आरंभ कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। बांसुरी की तान जब छिड़ती है तो हम जैसे सुर सरिता में अवगाहन करते हैं, मन दीन दुनिया से बेखबर होकर साधना में लीन हो जाता है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनका पूरा नाम रणेंद्र भानु मजूमदार है, आप भारतीय संगीत जगत के ऐसे अनुपम साधक हैं जिन्होंने अपनी बांसुरी की मधुर तान से शास्त्रीय, लोक और फिल्म संगीत तीनों धाराओं को अद्भुत सौंदर्य प्रदान किया है। उनकी बांसुरी से निकलने वाले स्वर मानो प्रकृति की शांत सरिता की तरह हृदय को स्पर्श करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की गंभीरता और आध्यात्मिकता को उन्होंने अपनी कला के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। उन्होंने बांसुरी की दुनिया में कई नए प्रयोग किए, एक नई दिशा दी। फिल्म संगीत में भी पंडित रोनू मजूमदार ने बांसुरी को केवल एक वाद्य यंत्र नहीं रहने दिया, बल्कि उसे भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बना दिया। उनकी धुनों में कहीं प्रेम की कोमलता है तो कहीं लोक जीवन की मिट्टी की सोंधी सुगंध। लोक संगीत में उनकी बांसुरी भारतीय संस्कृति और परंपरा की आत्मा को जीवंत कर देती है। फिल्म संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। इस श्रृंखला की सुरीली कड़ियां पिरोने के लिए हमने आमंत्रित किया है पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार जी को, जो आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। पंडित जी को पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, कुमार गंधर्व पुरस्कार के अलावा अन्य बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। उन्होंने अपनी साधना और प्रतिभा से ये सिद्ध किया है कि बांसुरी केवल संगीत का साधन नहीं, बल्कि आत्मा और संवेदना की मधुर अभिव्यक्ति है। पंडित जी के साथ तबले पर हैं अजीत पाठक जी, जो आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं, और बांसुरी संगत के लिए हमने आमंत्रित किया है कल्पेश साचला जी को। तो हम शुरू करते हैं श्रृंखला और हम स्वागत कर रहे हैं पंडित रोनू मजूमदार जी का। पंडित जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार ममता जी, आज बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे कि मैं अपने साथियों के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ। कुछ बातचीत, कुछ संगीत की चर्चा तो होगी ही
0: जी। और अब हम अजीत जी का स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। अजीत जी, स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: और अब बांसुरी संगत के लिए हमने आमंत्रित किया है कल्पेश साचला जी को। कल्पेश जी, नमस्कार, स्वागत।
3: जी नमस्कार।
0: तो अब हम शुरू करते हैं। रोनूदा, आप ये बताइए कि आज इस श्रृंखला की पहली कड़ी में बांसुरी का खजाना खोलेंगे तो सबसे पहले खजाने से कौन से मोती निकालेंगे? हमें तो आपकी ही बांसुरी का वो गाना याद आ रहा है, खाली हाथ शाम आई है, इजाजत फिल्म का गाना, जिस पर आपकी बड़ी सुरीली तान सुनाई पड़ती है, आप क्या कहेंगे?
1: ये एक ऐसा गाना पंचमदा आर डी बर्मन साहब ने कंपोज किया था। उसके पहले भी मैंने आशा जी के साथ बहुत गाने बजाए, मगर इस गाने ने मेरी उनसे दोस्ती करवा दी।
0: जी जी,
1: मतलब वो मेरी माँ भी थी और दोस्त भी थी, मन की बातें मुझसे साझा करती थी, सुख दुख की हर बातें मेरे साथ करती थी
0: जी।
1: और जैसे ही मैंने बजाया, वो सिंगर बूथ, उस जमाने में तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तो आज की तरह नहीं कि वो जमाना अलग था। वो फिल्म सेंटर का बहुत बड़ा एक हॉल, कोई जैसे कि मैरिज का हॉल हो, इतने बड़े हॉल में 150 म्यूजिशियन बजा रहे हैं, ऐसा माहौल था
0: जी।
1: तो सिंगर बूथ से निकली और सबसे पहले मेरे पास आई, तो पहले वो उन्होंने पूछा कि अरे तुम क्लासिकल आर्टिस्ट हो क्या? मैंने बोला हाँ। तो अपने गुरुओं का नाम मैंने बताया, बोली कि सबसे बड़ी बात जो मुझे ये लगी कि जैसे मैं मुखड़ा गा रही थी, जितनी वैरायटी विविधता मैं कर रही थी, उससे अलग हटके तुमने कैसे सोचा? मैंने तो सारी वैरायटी, मुझे लगा कि मैंने गा दिया, मैंने भी जो एक भाव शुरू से वैसा ही था
0: जी जी,
1: एक फक्कड़पना शुरू से था। मैंने कहा दीदी ये तो सागर है, इसका था कहां से मिलेगा, ये तो जितना डूबेंगे उतना और गहराई मिलेगा। बोली बहुत अच्छा, तुम घर आओ। तो उसके बाद प्रभु कुंज में जाने लगा मैं
0: जी।
1: ये लोग सारी बहनें तब प्रभु कुंज पेटर रोड में रहते थे
0: जी, बिल्कुल
1: जी, लता जी।

0: भी मालूम था कि मैं आशा जी से बहुत क्लोज हूँ, तो जैसे ही मैं जाता था तो बोलती थी तू आशा से मिलने आया है ना। तो एक अजीब सा, तो मैं आपको एक मुखड़ा और अंतरा खाली हाथ शाम आई का बजा के सुना रहा हूँ।
1: जी जी।

0: वाह पंडित जी, आपने तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर दिया। और सचमुच जब फिल्मी गाना सुनते हैं खाली हाथ शाम आई तो भी हम यहाँ स्टूडियो में सुनकर सचमुच अभिभूत हो गए। तो अब बताइए, अब क्या आप सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: 1990 आते आते क्लासिकल 16 में पहले से ही था, ये नहीं कि फिल्म में मैं पहले बजाया और फिर क्लासिकल। क्लासिकल तो मैं 6 साल की उम्र से बजा रहा हूँ।
0: जी जी।
1: मगर नाम नहीं हुआ था मेरा, पहचान नहीं बनी थी, तो 1990 से ना मेरी पहचान होने लगी
0: जी।
1: तो कई बार मैं रिकॉर्डिंग मिस कर जाता था तो पंचम दास से बोलती थी कि अरे वो रोनू नहीं है, फिर कैसे चलेगा?
0: क्या बात है
1: क्या कौन बजाएगा ऐसे
0: जी।
1: तो एक एल्बम कहते हैं ना कि जब तक इंसान सामने रहता है तो उसकी कीमत मालूम नहीं पड़ती है। जब पंचम दास चले गए तो लोगों को मालूम पड़ा कि दिल पड़ोसी है
0: जी
1: क्या एल्बम था
0: जी।
1: उसमें एक गाना था गुलजार साहब का लिखा हुआ, सातों बार बोले बंसी एक ही बार बोले ना।
0: वाह, तो ये आप बजा के सुनाएंगे?
1: मैं आपको बजा के सुना रहा हूं
0: जी।
1: तो उस गाने की खास बात ये थी कि मैं था अमेरिका में और उन्होंने और भी बांसुरी वादक थे
0: जी
1: जिससे बजवा सकते थे, वो लोग दिए थे, वो थे, सभी अच्छे हैं
0: जी,
1: बुरा तो कोई है नहीं,
0: बिल्कुल
1: सभी अपने हिसाब से अच्छा ही बजाना चाहते हैं। मगर मेरे लिए इंतजार किया,
0: क्या बात है,
1: ये गाना तो अमेरिका से आ जाएगा तो ही होगा रिकॉर्ड।
0: वाह।
1: और फिर वो आशा जी की मेरी जुगलबंदी हो गई
0: जी,
1: ऐसा नहीं लगा कि मैं संगतकार हूं, मैं उसमें छोटा सा पीस बजा रहा हूं, ऐसा नहीं लगता
0: जी।
1: तो मैं सातों बार मैं सुना रहा हूं आपको
0: जी, स्वागत।

0: वाह दादा, आपने तो फिर एक बार अभिभूत कर दिया। और बस दिल पड़ोसी एल्बम का ये जो सुरीली तान आपने छेड़ी, बहुत अद्भुत थी। तो अब आज की इस कड़ी को यहीं समेटते हैं, श्रोताओं को कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुन रहे थे श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आज आपने सुनी इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओ, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में स्वागत करती हूँ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारानिया। आइए आपको सुनवाते हैं पहली तारीख फिल्म का ये गीत, क्योंकि आज है पहली तारीख जुलाई की। किशोर कुमार का गाया गीत, कमर जलालाबादी के बोल हैं, सुधीर फड़के का संगीत।
1: दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है, दिन है सुहाना।

बीवी बोली घर जरा जल्दी से आना, जल्दी से आना। शाम को पिया जी हमें सिनेमा दिखाना, हमें सिनेमा दिखाना। करो ना बहाना बहाना बहाना, करो ना बहाना।

पैसा जरा लाना, ओ पैसा जरा लाना, लाना लाना, ओ पैसा जरा लाना, आज पहली तारीख है, खुश है जमाना।

है मान है बड़े ही शरीफ है पुराने मेहरबान है बड़े ही शरीफ है पुराने मेहरबान है और एक जेब को बचाना बचाना बचाना जेब को बचाना।

0: कुमार है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: श्रोताओं, आज है संगीतकार सी अर्जुन का जन्मदिन, उन्हें याद करते हुए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आगे।

आइए अब आपको सुनवाते हैं सुशीला फिल्म का गीत। आशा भोसले ने इस गीत को गाया है, इंदीवर ने रचना की है और सी अर्जुन का संगीतबद्ध किया गीत है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवा रहे हैं रक्षाबंधन फिल्म का गीत, जिसे गाया है उषा मंगेशकर और साथियों ने। प्रदीप का लिखा गीत है और तर्ज बनाई है सी अर्जुन ने।

मैं और मेरा भाई इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में। जान निसार अख्तर के बोल थे, सी अर्जुन का संगीत। अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया ये गीत। प्रदीप ने इस गीत के बोल लिखे हैं, सी अर्जुन ने तर्ज बनाई है। फिल्म का नाम है आंख का तारा।

एक साल पहले इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज में। इंदिवर की रचना थी, सी अर्जुन का संगीत और ये गीत बना कार्यक्रम भूले बिसरे गीत की आखिरी प्रस्तुति।

इंद्रे, सुबह के 7:30 हुए हैं और अब शुरू होता है वो प्रोग्राम जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार।

नमस्कार आप सभी को आकाशवाणी सासाराम के प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन सिन्हा। हर सुबह की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं उपयोगी जानकारी, प्रेरणादायक विचार, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों की झलक, स्थानीय गतिविधियां, मौसम का हाल, समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां और अंत में मधुर फिल्म संगीत। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं आज के सुविचार से। आज का सुविचार है, जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ईमानदारी, अनुशासन, परिश्रम और धैर्य, यही वे चार स्तंभ हैं जिन पर उज्जवल भविष्य की इमारत खड़ी होती है। प्रिय श्रोताओं, सफलता संयोग से नहीं मिलती बल्कि निरंतर प्रयास, सकारात्मक सोच और कठिन परिश्रम जब हम करते हैं तो हमें ये प्राप्त होती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में दृढ़ संकल्प हो तो मंजिल हमें अवश्य मिलती है।

और सुविचार के बाद अब समय है कार्यक्रम में सबसे रोचक और ज्ञानवर्धक हिस्से का, जिसका नाम है आज का इतिहास। आइए जानते हैं कि 1 जुलाई के दिन इतिहास के पन्नों में कौन कौन सी घटनाएं दर्ज हुई थी जिन्होंने भारत और विश्व को नई दिशा दी है। श्रोताओं, आज पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। एक रोचक तथ्य ये भी है कि डॉक्टर बीसी रॉय, इनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ और निधन भी आज ही के दिन, यानी दोनों 1 जुलाई को ही हुआ था। डॉक्टर बीसी रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार की राजधानी पटना में। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने चिकित्सा की उच्च शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर भारत के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सकों में गिने जाने लगे। आज का दिन उन सभी डॉक्टर्स को सम्मान देने का है जो दिन रात मानव सेवा में लगे रहते हैं। और आज ही के दिन वर्ष 1949 में संसद के अधिनियम के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, यानी ICAI। आज देश भर में लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, कर व्यवस्था और वित्तीय पारदर्शिता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था के इस दौर में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अब रुख करते हैं विश्व इतिहास की ओर। 1 जुलाई 1867 को उत्तरी अमेरिका के 4 प्रांतों को मिलाकर आधुनिक कनाडा का गठन हुआ। आज कनाडा विश्व के विकसित देशों में शामिल है और प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन यानी 1 जुलाई को वहां राष्ट्रीय पर्व कनाडा डे बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड, आतिशबाजी और राष्ट्रीय ध्वज के साथ समारोह आयोजित किए जाते हैं। खेल जगत में भी 1 जुलाई का विशेष महत्व है। वर्ष 1903 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध साइकिल प्रतियोगिता टूर द फ्रांस का पहला आयोजन प्रारंभ हुआ। पहली प्रतियोगिता में केवल 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। आज ये प्रतियोगिता लगभग 3,500 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसे विश्व की सबसे कठिन खेल प्रतियोगिताओं में गिना जाता है। वर्ष 1908 की बात करें तो आज ही के दिन SOS, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संकट संकेत के रूप में आधिकारिक मान्यता मिली। हम सभी के मोबाइल में भी ये फीचर आपको देखने को मिलता है। समुद्र में फंसे जहाज हो या किसी विमान पर अचानक संकट आ जाए, ऐसी परिस्थितियों में सहायता के लिए यही संकेत पूरी दुनिया में प्रयोग किए जाते हैं। अब बात अर्थव्यवस्था की करते हैं। 1 जुलाई 1944 को अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर विश्व के 44 देशों का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना हुई। आज भी ये संस्थाएं विश्व के अनेक देशों की आर्थिक नीतियों, विकास परियोजनाओं और वित्तीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। 1 जुलाई 2017 भारतीय आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसी दिन पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST लागू किया गया। GST लागू होने से देश के अनेक अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत किया गया और पूरे भारत में

एक देश एक कर की व्यवस्था लागू हुई। इस सुधार का उद्देश्य व्यापार को सरल बनाना और कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना था। तो आज हमने बात की आज के इतिहास के बारे में, अगले सेगमेंट पे हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले संगीतमय धुन आपके लिए।

समाचार पत्रों की सुर्खियों से। अब आइए एक नजर हम डालते हैं महत्वपूर्ण समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियों पर। दैनिक हिंदुस्तान अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखता है, धान की खेती पर संकट, बिहार के 23 जिलों में 50% से कम बारिश, किसान परेशान। दैनिक हिंदुस्तान ये भी लिखता है कि आज से बिहार के सरकारी विद्यालय सुबह 9:30 से शाम 4 तक चलेंगे। दैनिक जागरण की सुर्खियां हैं, अगले साल से मेडिकल प्रवेश परीक्षा में देखने को मिलेंगे कई अहम बदलाव, 2 में हो सकता है नीट परीक्षा। और दैनिक जागरण ने यह भी अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किया है कि यूजर्स फोन नंबर शेयर किए बिना कर सकेंगे व्हाट्सएप चैट। और आगे दैनिक जागरण लिखता है, जनरल धीरज सेठ बने देश के 31वें सेना प्रमुख। प्रभात खबर के मुख्य रूप से अपनी सुर्खियों में ये खबर प्रकाशित करता है, 15 जुलाई के बाद ही मानसून पकड़ेगा रफ्तार, अब 31 जुलाई तक दाखिल करें जीएसटी में अपील। और नीदरलैंड के बाद जर्मनी भी फीफा विश्व कप से हुआ बाहर।

अब यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। लेकिन उसके पहले अब हम शुरू करते हैं हिंदी फिल्म संगीत का एक छोटा सा सेगमेंट।

इस गीत को हमने लिया था फिल्म हीरो से। और लीजिए अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जंगल लव मूवी का गीत है, आइए सुनते हैं।

दोस्तों कहते हैं कि प्रेम की मिठास और संगीत की मधुरता जब एक साथ मिल जाए तो मन अनायास से मुस्कुरा उठता है। उम्मीद है ये गीत आपके दिल के किसी न किसी कोने को ज़रूर छू गया होगा। और इसी गीत के साथ अब मुझे यानी राजीव रंजन सिन्हा को दीजिए कार्यक्रम नमस्ते रोहतास को समाप्त करने की अनुमति।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी देर में आप जुड़ेंगे समाचार प्रभात के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपये से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल

0: प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपये, गोवा में 406 रुपये और केरल में 401 रुपये प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
2: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $27 अरब से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
3: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह

0: आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय यूपी TET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है।

0: पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न है और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही है। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए देशभक्ति संगीत।

सबसे पहला पत्र आज शामिल होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं, भाटापारा दतरेंगी से इन्होंने ये पत्र लिखा है। द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा जी,

और अगला जो पत्र हमें मिला है, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से लिखते हैं भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सुनना चाहते हैं सनम बेवफा का ये प्यारा सा गीत।

पत्र को एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा। पुराना तालाब डुमराओं से लिखते हैं वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से राजडी अंसारी और फातमा नाज। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। डोंडी लोहारा बालोद से प्रभा रानी बेलदार। जेल रोड नजीबाबाद से राधिका जाटव और राधा रानी जटोलिया। चंद्रनगर सहारनपुर से मनमोहन चुग, मीठी चुग और खट्टी चुग। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज का ये पत्र हमें मिला है। छत्रपति संभाजी नगर से लिखते हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। फुटानी चौक नरहन स्ट्रीट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन पराशर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित। मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से हमारे श्रोता हैं भाई फटफटिया झा, गुंजन पराशर, अमित सुमित छोटू और बीके सुर गनैया। लीजिए हम आपकी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म दिल से, आइए सुनते हैं।

रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन राज, पवन उमा, संजय उमा, दीपक उमा और कमल उमा। खंडवा से लिखते हैं राधिका, अनीता, सपना और राकेश ताई। जेल रोड रायगढ़ से निशा डोमिन, उमा डोमिन और जानवी डोमिन। चंद्रनगर सहारनपुर से देवशंकर यादव, प्रभा रानी यादव, सुरेश यादव और नरेंद्र यादव जी का ये पत्र हमें मिला है।

विरमगाम जंक्शन से अजीत कुमार जाटव, हेमा जाटव और प्रमीला जाटव, जेल रोड जालंधर से मीना कौर और संदीप कौर, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से लिखते हैं राजेश डॉली, महेश डॉली और रमेश डॉली, बुलंदशहर से फर्जी दयाशंकर और फर्जू हरिशंकर, लुधियाना से मंदीप प्रभा कौर और तुषार पूजा कौर। इसके बाद हमारे जो श्रोता हैं जिनके पत्र हमें मिले हैं, कबीर रेडियो लिसनर्स क्लब लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनौरी और प्रकाश वीर राजपूत, डोंडी लोहारा बालोद से कमलेश जयपुरिया, सनी चौक खंडवा से पिंकी मिंकी सिंकी और रिंकी, जेल रोड रायगढ़ से लालचंद्र मिश्रा, रमेश चंद और कुमकुम मिश्रा, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से लिखते हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। और ये पत्र हमें मिला है गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी कुमकुम, कुमारी साक्षी, बुल्की वाली फलना झा, नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला जी का भी पत्र मिला है। ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से लिखते हैं ये श्री सुधाकर राजे जाधव, श्री डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमारी संचित बयाल, मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, करडा रिसोर्ट से कुमारी सानवी देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख, समस्त राजे जाधव देशमुख वायाल परिवार। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा जी। और ये पत्र हमें मिला है कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निखत परवीन, सदफ आरजू, साहिल अरमान, अजफर हामिद, मशकूर आलम, शमा परवीन। हम आपकी पसंद का ये गाना जो है फिल्म इज्जतदार से अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ें हैं, आइए सुनते हैं इस गीत को।

और हमारे श्रोता हैं सोनामती देवी, अर्चना देवी, आराध्या कुमारी, प्रियंका कुमारी, राधे कुमारी, कुसुम देवी चौरसिया, कन्हैया चौरसिया, वार्ड नंबर 2 रोहतास से इनका ये पत्र हमें मिला है। ग्राम पोस्ट खुरमाबाद से वार्ड नंबर 4 से अंजनी देवी, मुन्नी देवी, बेबी देवी, उषा देवी, चूही देवी, सूरज चौरसिया, सुजल चौरसिया, इनका भी पत्र हमें मिला है। थाना नोखा से आया है ये पत्र। ज़िला रोहतास से धनजी प्रसाद चौरसिया, गंगा सागर चौरसिया, सोनू कुमार चौरसिया, पिंकू कुमार चौरसिया, जीजा भरत चौरसिया, और लिखने वाले हैं कन्हैया कुमार जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थाना चेनारी, ग्राम खुरमाबाद से, बाजार रोहतास से विदावती देवी, प्रभावती देवी, कुसुम देवी, प्रियंका कुमारी, अर्चना देवी, रंजीता देवी, प्रभा देवी, चाचा जी भरत चौरसिया। और ये है थाना चांद से हमारे श्रोता जुड़े हैं। ग्राम श्री होरा से शंभु प्रसाद चौरसिया, राजू कुमार चौरसिया, गोलू कुमार चौरसिया, प्रभावती देवी, विदावती देवी चौरसिया, भरत प्रसाद चौरसिया, बालवीर चौरसिया।

मनमोहन चौरसिया, थाना चेनारी, पोस्ट खुरमाबाद, वार्ड नंबर 5 से लिखते हैं। रामजी प्रसाद चौरसिया, लधुमन प्रसाद चौरसिया, सन्नी चौरसिया, सोनू कुमार चौरसिया, पिंकू कुमार चौरसिया, विकास कुमार चौरसिया, भरत बाबू चौरसिया, चौरसिया परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने पत्र लिखा है। जबरा पहाड़ी रोहतास से सूरज चौरसिया, टेंगर प्रसाद चौरसिया, मदन प्रसाद चौरसिया, समीर कुमार, मन भावती देवी, कलावती देवी, अनुप्रिया कुमारी और नायडो कुमारी। ग्राम पोस्ट खुरमाबाद, पीपल के पेड़ के पास से लिखते हैं। भोला प्रसाद चौरसिया, नीतीश कुमार चौरसिया, अनु कुमारी, अनीता देवी, प्रहलाद चौरसिया तथा घर के समस्त चौरसिया परिवार, हम सभी चौरसिया परिवार की तरफ से सासाराम आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये अगला पत्र है जिला कैमूर, वार्ड नंबर 11, नगर पालिका भभुआ से वैजनाथ चौरसिया, कृष्णा कुमार चौरसिया, मोहन कुमार चौरसिया, किरण देवी, सोनू कुमार चौरसिया, वंदना देवी, हम सभी परिवार की तरफ से सासाराम आकाशवाणी प्रणाम, अच्छा प्रणाम भेज रहे हैं सभी को। आपको भी प्रणाम है, नमस्कार है। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से आप लोग पत्र भेजते हैं। फिलहाल अब कार्यक्रम होता है समाप्त। कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे यानी राजीव रंजन सिन्हा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप बने रहिएगा, कुछ ही देर में आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने

संघर्ष और सफलता का साक्षी है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। बिहार समेत कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी दर में 15 से 25% तक की बढ़ोतरी। विधान परिषद के उपचुनाव और द्विवार्षिक चुनाव में नवनिर्वाचित 10 सदस्य आज करेंगे शपथ ग्रहण। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में आज से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही लागू होगा एक समान शैक्षणिक कैलेंडर। और मानसून का प्रदेश के सभी जिलों में विस्तार। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार और सीतामढ़ी समेत 6 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि जी राम जी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्तमान वित्तीय

0: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि बीबीजी रामजी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: राज्य सरकार ने जी राम जी योजना लागू करने को लेकर व्यापक तैयारी की है। योजना के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति का गठन किया गया है। संचालन समिति में ग्रामीण विकास विभाग समेत 17 विभागों के सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी को जिला कार्यक्रम समन्वयक और उप विकास आयुक्त DDC को अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक नामित किया गया है। विकसित भारत जीरामजी योजना के तहत ग्राम पंचायतें 10 लाख रुपए तक, प्रोग्राम ऑफिसर 15 लाख रुपए तक, DDC 1 करोड़ और जिलाधिकारी 30 करोड़ रुपए तक की योजनाएं स्वीकृत कर सकेंगे। विधान परिषद के उपचुनाव और द्विवार्षिक चुनाव में विधानसभा कोटे से नवनिर्वाचित सदस्य आज शपथ ग्रहण करेंगे। इस संबंध में कार्यक्रम का आयोजन विधान परिषद उपभवन सभागार में होगा। सभापति अवधेश नारायण सिंह सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। शपथ लेने वाले नवनिर्वाचित कुल 10 सदस्यों में से 8 पहली बार सदन की सदस्यता लेंगे। इनमें निशांत कुमार, अनिल ठाकुर, शिवरानी प्रजापति, ललन कुमार, अशरफ अंसारी, शीला पंडित और पवन सिंह शामिल हैं। वहीं भाजपा के संजय मयूख और राजद के सुनील सिंह पहले भी सदन के सदस्य रह चुके हैं। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में आज से नया शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके साथ ही राज्य के विश्वविद्यालयों में एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू हो गया है। नए कैलेंडर के अनुसार स्नातक कक्षाओं के 8 सेमेस्टर को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। लोक भवन ने अपरिहार्य परिस्थिति में कुछ विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र कार्यक्रम में 1 सप्ताह की छूट दी है। रेलवे ने पूर्व मध्य रेल के 44.40 किलोमीटर लंबे मानसी सहरसा रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 499 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक रिपोर्ट।
3: मानसी सहरसा खंड वर्तमान में एकल रेल लाइन है जहां यात्रियों और मालगाड़ियों का भारी दबाव रहता है। इस मार्ग पर प्रतिदिन 24 जोड़ी यात्री ट्रेनें संचालित होती हैं। साथ ही खाद्यान्न, सीमेंट, उर्वरक, रेत और पत्थर जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई भी इसी रेलखंड से की जाती है। रेलवे

0: अनुसार परियोजना पूरी होने के बाद रेल यातायात अधिक सुचारू होगा, ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार आएगा और परिचालन दक्षता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही हर वर्ष लगभग 17,64,000 टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता विकसित होगी, जिससे कृषि, निर्माण और अन्य क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
1: पटना सिटी के कच्ची दरगाह और वैशाली जिले के बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल के शेष निर्माण को निर्बाध पूरा कराने के लिए आज से अगले आदेश तक यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया है। निर्माणाधीन पुल पर पिलर संख्या 23 और 67 के बीच तेजी से कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य में लगे इंजीनियर और कर्मियों की सुरक्षा के मद्देनजर यातायात पर रोक लगाई गई है। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रूपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश भर में मानसून का विस्तार हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता से अगले एक सप्ताह तक राज्य के सभी जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, पश्चिम चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी में भारी से अत्यधिक भारी बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अररिया, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा और सुपौल जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है।
1: दिनांक 1 जुलाई, राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। बांका, भागलपुर एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर विभाग के अनुसार जून महीने में 23 जिलों में सामान्य से 50% कम बारिश हुई है। गया जिले में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई। इस अवधि में प्रदेश में सामान्य से 46% कम बारिश हुई है। बिहार कैडर के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अमित कुमार प्रधानमंत्री की सुरक्षा संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के नए निदेशक बनाए गए हैं। श्री कुमार वर्तमान में CRPF में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार वर्तमान SPG निदेशक आलोक शर्मा का कार्यकाल 21 मार्च 2027 को पूरा होने के बाद अमित कुमार निदेशक का पदभार ग्रहण करेंगे। फिलहाल श्री कुमार को SPG में OSD के रूप में तैनात किया जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में ईमेल अपडेट करने की सुविधा को निःशुल्क कर दिया है। यह सुविधा आज से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इच्छुक व्यक्ति आधार मोबाइल एप्लीकेशन से अपना ईमेल अपडेट कर सकते हैं। इससे पहले इस सुविधा के लिए ₹75 का शुल्क निर्धारित था। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स। यह विषय उन डॉक्टरों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालता है जो अपना जीवन दूसरों की देखभाल के लिए समर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार सहित अन्य गणमान्य लोगों

ने इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से T20 क्रिकेट श्रृंखला शुरू हो रही है। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला इंग्लैंड के चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे शुरू होगा। विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के आज टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने की संभावना है। वैभव को संजू सैमसन या ईशान किशन की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। गौरतलब है कि आयरलैंड के खिलाफ दो T20 मैचों की श्रृंखला के दौरान वैभव सूर्यवंशी को अवसर नहीं देने को लेकर टीम चयन पर सवाल उठ रहे हैं। पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने संयुक्त छापेमारी के दौरान वांछित अपराधी पांडव गिरोह के मुख्य सरगना संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दानापुर के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी पर हत्या और रंगदारी समेत 26 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पटना नगर निगम क्षेत्र में आज से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि 31 जुलाई तक 9 टीमें नगर निगम क्षेत्र के सभी 6 अंचलों में अतिक्रमण और अवैध व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में पहली बार एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू, नया सत्र आज से, जनवरी में सम सेमेस्टर की पढ़ाई। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, वीबीजी रामजी में न्यूनतम मजदूरी अब 300 रुपए से कम नहीं होगी। प्रभात खबर ने मौसम से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, मौसम की मार, 15 के बाद मानसून पकड़ेगा रफ्तार। दैनिक भास्कर केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए बयान को प्रमुखता देते हुए लिखता है, एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को नुकसान नहीं। अखबार लिखता है, E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता। राष्ट्रीय सागर ने मंत्री दिलीप जायसवाल के हवाले से लिखा है, 15 अगस्त को 30,000 भूमिहीन परिवारों को मिलेगा वास भूमि प्रमाण पत्र। आज अखबार के शब्द हैं, 18 जिलों में खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी रामजी अधिनियम आज से लागू। बिहार समेत कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी दर में 15 से 25% तक की बढ़ोतरी। विधान परिषद के उपचुनाव और द्विवार्षिक चुनाव में नव निर्वाचित 10 सदस्य आज करेंगे शपथ ग्रहण। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में आज से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही लागू होगा एक समान शैक्षणिक कैलेंडर। और मानसून का प्रदेश के सभी जिलों में विस्तार। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार और सीतामढ़ी समेत 6 जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे गीत मालिका। 9:30 का समय रहेगा आज के फनकार कार्यक्रम सुनने का। हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे 10:00। हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम श्रम संसार, इसके अंतर्गत भेंट वार्ता सुनेंगे बाल श्रम विषय पर। वरीय अधिवक्ता प्रकाश सिंह बादल से रवि भूषण साहू की बातचीत। लोक माधुरी कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीत। समय रहेगा 10:30। भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित प्रोग्राम होगा रसधार, जिसे आप सुनेंगे 10:45 पर। लोक माधुरी का पार्ट 2 11:00। रंग तरंग आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र के सौजन्य से 11:25 पर। दोपहर 12:00 हिंदी में समाचार, यादों की महफिल, विविध भारती की गीतमाला, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे 12:05 पर। प्रादेशिक समाचार 2:00, इलाकाई खबरें 2:05 पर, रोजगार सूचना 2:10 पर, सदाबहार नगमे, फिल्मी गीत सखी सहेली, आज के मेहमान 2:30 पर, विविध भारती के सौजन्य से। हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे 5:00। वंदन 5:10 पर, महिला कार्यक्रम घर आंगन शाम 5:30 पर, और भोजपुरी लोकगीत शाम 6:00। भोजपुरी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के पटना केंद्र से सुनिएगा शाम 6:05 पर। ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर, इसका प्रसारण समय रहेगा शाम 6:10। सांझ गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:40 पर। प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस, ये 7:00 प्रसारित किया जाएगा। गुड इवनिंग रोहतास 7:15।

हेलो मनपसंद फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम, इसका प्रसारण समय रहेगा संध्या 7:50 पर। अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं तो आज दोपहर 11 से 12 के बीच कॉल कीजिएगा। हमारा नंबर नोट कीजिए 0618422110। रिकॉर्डिंग हर बुधवार प्रातः 11 से 12 के बीच की जाती है। सुर सौरभ शास्त्रीय गायन पर आधारित यह कार्यक्रम 9 आप सुनेंगे और रसरंग का समय रहेगा 10। चित्रपट तराने रात्रि 10:30। हिंदी में समाचार 11, अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर। अभी आप सुन रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। लीजिए अब अगले कार्यक्रम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यक्रम है गीत मालिका। आप सभी श्रोताओं का फिर से तहे दिल से स्वागत इस कार्यक्रम में। सबसे पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, चांदनी फिल्म का ये गीत है जिसे अपनी आवाज़ें दी हैं सुरेश वाडेकर ने, अनुपमा देशमुख ने।

लीजिए अब सुनिए पत्थर के फूल फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ें हैं।

FM 103.4 MHz पर आप सुन रहे हैं अपना ही पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है गीत मालिका। और गीत मालिका में अब हम दोस्तों आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में हीरो फिल्म का ये नगमा।

इस गीत को हमने लिया था फिल्म हीरो से, आवाज़ लता मंगेशकर की। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी साहब ने और संगीत की धुन तैयार की थी इस गीत के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने।

और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत पर आधारित गीत मालिका अब मुझे यानी राजीव रंजन सिन्हा को दीजिए समाप्त करने की अनुमति। आप बने रहिएगा इसी चैनल पर, क्योंकि कुछ ही देर में आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के विविध भारती से। कार्यक्रम होगा आज के फनकार, 10 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे और 10:05 पर श्रम संसार, जिसके अंतर्गत आप भेंट वार्ता सुनेंगे। बाल श्रम विषय पर वरीय अधिवक्ता प्रकाश सिंह बादल से रवि भूषण साहू की बातचीत सुनेंगे और 10:30 लोक माधुरी, 10:45 पर रसधार का लुत्फ लीजिएगा। आइए चलते हैं, विविध भारती से जुड़ते हैं।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जा

देकर दिया है। श्री अर्जुन मेलोडी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीतबद्ध गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

दोस्तों, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध, आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन और हमारा गाना बन गया।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू होंगी। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत तथा राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। फिल्म और रंगमंच की लोकप्रिय हस्ती विजया मेहता का 92 वर्ष की आयु में कल रात मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। वे प्रयोगधर्मी मराठी रंगमंच की अग्रणी प्रतिभाओं में से एक थी। एक रिपोर्ट।
2: विजया मेहता ने रंगायन नाट्य समूह के माध्यम से मराठी रंगमंच को नई नाट्य भाषा, नई दृष्टि और वैश्विक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उनके चर्चित नाटकों में बैरिस्टर, सखाराम बाइंडर, हयवदन और वाडा चिरेबंदी शामिल है। रंगमंच के अलावा उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन कृतियों में अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई। विजया मेहता को वर्ष 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1986 में फिल्म राव साहेब के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को दर्शाता है। ये दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2,930 रुपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां

0: ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यवसायियों को लाभ होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। तीसरा 7 जुलाई, चौथा 9 जुलाई तथा पांचवां और अंतिम मैच 11 जुलाई को साउथहम्पटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए श्रम संसार। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे भेंट वार्ता बाल श्रम विषय पर वरीय अधिवक्ता प्रकाश सिंह बादल से रवि भूषण साहू की बातचीत।
2: श्रम संसार कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आप सभी का रेडियो दोस्त रवि भूषण। सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, आज भी हमारे देश में अक्सर यह देखने को मिलता है कि कई बच्चों को कृषि उद्योग या घरेलू श्रम सहित विभिन्न प्रकार के खतरनाक तथा गैर खतरनाक व्यवसायों में श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता। बाल मजदूरी अधिनियम 1986 के अनुसार किसी कारखाने या खान के कार्य अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को नियुक्त किया जाना बाल श्रम के अंतर्गत आता है। बाल श्रम हमारे समाज के लिए एक गंभीर समस्या है। बच्चों से ऐसे काम कराना जिसके चलते वे बचपन का आनंद लेने, शिक्षा प्राप्त करने या व्यक्तिगत विकास का अनुभव करने से वंचित हो जाते हैं, उसे बाल श्रम के रूप में जाना जाता है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम इससे समस्या पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या बाल श्रम एक अपराध है और इसे खत्म करने में हमारी और आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। श्रम संसार के आज के अंक में हमारे साथ मौजूद है सासाराम सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता प्रकाश सिंह बादल जी। प्रकाश जी, सबसे पहले अपने आकाशवाणी परिवार की ओर से और साथ ही साथ अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से आज के अपने इस एपिसोड में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं।
3: धन्यवाद
2: प्रकाश जी। जैसा कि हमने अभी अपने सुनने वाले श्रोताओं को बताया कि आज हम चर्चा करने वाले हैं बाल श्रम, जो आज भी हमारे समाज में एक अभिशाप की तरह है। सबसे पहले प्रकाश जी, आप कानूनी जानकार भी हैं, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि बाल श्रम है क्या, किसे बाल श्रम कहते हैं?
3: बाल श्रम की अगर बात करें तो बच्चे किसी भी देश के भविष्य होते हैं
2: जी,
3: और उनके हाथों में किताबें, खिलौने और सपने होने चाहिए, न कि औजार
2: जी।
3: लेकिन दुर्भाग्यवश दुनिया के कई हिस्सों में आज भी लाखों बच्चे स्कूल जाने के बजाय कारखानों, दुकानों और खेतों, होटलों में काम कर रहे हैं
2: जी,
3: और इसके लिए वो मजबूर भी हैं। तो अगर बात करें बाल श्रम की, तो जब कोई बच्चा ऐसी आयु में या ऐसे कार्य में लगाया जाता है जिससे उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उसका सामान्य विकास
2: जी
3: प्रभावित हो, तो उसे ही बाल श्रम कहते हैं
2: जी। प्रकाश जी, हम बाल श्रम की बात कर रहे हैं तो बाल श्रम या आज ही हमारे समाज में देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि ये कई वर्षों पहले से हमारे समाज में यह चला आ रहा है। जानना चाहेंगे आपसे कि बाल श्रम की शुरुआत कैसे हुई?
3: हाँ रवि जी, ये बाल श्रम कोई नई समस्या नहीं है। जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उसी समय यूरोप और अमेरिका में बड़ी संख्या में बच्चों से कारखानों में काम लिया जाता और उनको 12 से 14 घंटे तक काम कराया जाता था और इस हिसाब से उनको मजदूरी बहुत ही कम दी जाती थी। इसके बाद धीरे धीरे समाज में जागरूकता आई
2: जी
3: और बच्चों के अधिकारों को मान्यता मिली, जिसके बाद दुनिया के अधिकतम देशों ने बाल श्रम के लिए बहुत सारे कानून बनाए
2: जी।
3: भारत में भी आज़ादी के बाद इस समस्या को गंभीरता से लिया गया और संविधान तथा अलग अलग कानूनों के माध्यम से बच्चों को संरक्षण प्रदान किया गया।
2: प्रकाश जी, बाल श्रम के पीछे कौन से कारण जिम्मेवार हैं?
3: हाँ जी, अगर बाल श्रम की बात करें तो इसके बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं, जिसमें सबसे प्रमुखता से बात किया जाए तो गरीबी बाल श्रम का सबसे बड़ा कारण है। जब परिवार के पास पर्याप्त आय नहीं होती तब माता पिता चाहते हैं कि बच्चों से काम कराया जाए और उनको काम कराने के लिए भेज भी देते हैं
2: जी।
3: कई परिवारों में बच्चों की कमाई से ही भोजन, कपड़ा और जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। अब इस दूसरे कारण की अगर बात करें, इसमें अशिक्षा है। जो माता पिता शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं या नहीं समझते हैं, वे अपने बच्चों को स्कूल के बदले काम पर भेजा ज़्यादा फायदेमंद समझते हैं
2: जी।
3: फिर इसके पीछे एक बेरोजगारी जो हमारे समाज में जो है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो जब परिवार में वयस्क सदस्यों को रोजगार नहीं मिल पाता है तब उस घर के बच्चों पर कमाई का दबाव भी बढ़ जाता है
2: जी।
3: इसका एक और मुख्य कारण है जनसंख्या का वृद्धि होना। जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो समाज में

0: या परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और संसाधन जो है वो सीमित हो जाते हैं, तो ऐसे में बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है और बच्चे मजदूरी करने के लिए बाध्य हो जाते हैं
1: जी।
0: तो सस्ते श्रमिक की जो मांग हो रही है अभी है, डिमांड है हर जगह पर। तो अगर आज बात करें तो कंपनियों में या फैक्ट्रियों में हर जगह कॉस्ट कटिंग की बात चल रही है, यानी कि उत्पादन शुल्क में कटौती की जाए, तो ऐसे में इन जगहों पर बच्चों को सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है, क्योंकि बच्चे जो है मजदूरी के लिए आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं और इनकी कीमत भी कम इनको देते हैं
1: जी।
0: तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये सस्ते में मिल जाते हैं। इसके कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि सामाजिक असमानता
1: जी।
0: समाज में कमजोर, पिछड़े और वंचित वर्ग के बच्चे बाल श्रम के लिए अधिक शिकार होते हैं
1: जी।
0: और भी मुख्य कारण है मानव तस्करी। बहुत सारे बच्चों को बहला फुसला कर या धोखे से शहरों में ले जाकर उनसे मजदूरी कराई जाती है। तो ये सब कुछ कारण हैं जो बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं
1: जी।
2: जी प्रकाश जी, अभी आपने बताया कि बाल श्रम के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है उसमें गरीबी है, शिक्षा का अभाव भी है, सस्ता श्रम भी है। प्रकाश जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे बाल श्रम कितने तरह के होते हैं?
0: अब बाल श्रम के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे बात करें अगर तो औद्योगिक बाल श्रम
1: जी,
0: तो जैसे कारखानों, खादानों या जहां प्रोडक्शन होता है, उत्पादन इकाइयों में जो बच्चे कार्य करते हैं उन्हें औद्योगिक बाल श्रम ही कहते हैं। इसके अलावा फिर है कृषि श्रम
1: जी,
0: जो बच्चे खेतों में काम करते हैं, पशुपालन करते हैं या कृषि संबंधी जो यहाँ कार्य होते हैं वहाँ जो काम करते हैं वो कृषि श्रम में आते हैं बाल श्रमिक के रूप में। फिर आता है इसमें घरेलू श्रम। बहुत से बच्चे घरों में घरेलू नौकर के रूप में कार्य करते हैं, तो ये जो श्रम जो है बाल श्रम जो है ये घरेलू बाल श्रम के रूप में आता है। बहुत जगह सड़क या फुटपाथ पर बाल श्रम के रूप में आप देख सकते हैं
1: जी।
0: सड़क के किनारे या स्टेशन के बाहर बच्चे आपको दिख जाएंगे जूते पॉलिश करते हुए
1: जी।
0: या आपने देखा होगा कि फेरी पर बच्चे को सामान बेचते हैं या फिर वो कूड़ा बीनते हैं
1: जी।
0: तो ये सब जो काम जो है फुटपाथ आधारित बाल श्रम की श्रेणी में आता है
1: जी।
0: कुछ और बाल श्रम इसमें है जैसे खतरनाक, जो डेंजरस लेबर जो है उसमें आते हैं, जैसे कि रसायनों, विस्फोटक पदार्थ के उत्पादन, भारी मशीनों में काम करना या फिर आपने सड़कों के किनारे स्टंट बच्चे करते हैं, वो खेल तमाशा दिखाते हैं, वो भी एक खतरनाक स्टंट होता है। तो खेल तमाशे करके भी बच्चे इसमें बाल श्रम के आते हैं, बाल श्रम में आते हैं ये।
2: प्रकाश जी, बाल श्रम का हमारे समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है?
0: रवि जी, बाल श्रम से सबसे बड़ा नुकसान शिक्षा का नुकसान होता है
1: जी।
0: क्योंकि जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है और शिक्षा प्राप्त नहीं करता है तो उसका भविष्य सीमित हो जाता है। सेकंड है कि का नुकसान ये है कि स्वास्थ्य उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। बच्चे जो काम करने चले जाएं कम एज में तो उनका शारीरिक और मानसिक पूरा विकास नहीं हो पाता है और लंबे समय तक काम करने से उनमें कुपोषण, सांस का रोग, दृष्टि संबंधी रोग या शारीरिक विकास जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। और साथ ही बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब कम उम्र के बच्चे काम और जिम्मेदारियों का बोझ उठाते जब हैं तो उस बच्चों में तनाव, डिप्रेशन और आत्मविश्वास की कमी पैदा हो जाती है
1: जी।
0: इसके अलावा बाल श्रमिकों का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण बहुत ज़्यादा होता है, यह भी एक गंभीर समस्या है। गरीबी के चक्कर शुरू हो जाता है, तो बच्चों को उचित शिक्षा न मिलने के कारण वे भविष्य में भी काम जो करते हैं वो बहुत आय उनकी सीमित उसमें होती है
1: जी।
0: तो इस तरह से वो उनका विकास, मानसिक विकास नहीं होने से वो सीमित आय में ही रह जाते हैं
1: जी।
0: और इसके अलावा बाल श्रम से उनके मानवाधिकारों का भी उल्लंघन होता है
1: जी।
0: और बाल श्रम बच्चों के मौलिक अधिकारों जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य, विकास और गरिमा के अधिकार का भी हनन करता है
1: जी।
0: इससे राष्ट्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तो देश की कुशल कार्यबल की संभावना भी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है
1: जी।
0: जिससे आर्थिक हानि भी होती है। बाल श्रम तत्कालिक लाभ तो देता है परंतु दीर्घकालीन दृष्टि से देश की अर्थव्यवस्था को काफी पीछे ढकल देता है ये, और इसे समाज पर कल्याण भार जो भी वो भी बढ़ जाता है। बाल श्रम से जो बीमारियां, अपराध और मानसिक समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं वो देश और के स्वास्थ्य और न्यायिक प्रणाली पर भी अतिरिक्त प्रभाव डालती हैं
1: जी।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे भी हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े रहेंगे वरीय अधिवक्ता प्रकाश सिंह बादल जी। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में एक बेहतरीन गीत जिसे हमने लिया है फिल्म लगान से। आवाजें हैं AR रहमान, अलका याग्निक की, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, शान और सेहर की। गीत है जावेद अख्तर साहब के और संगीत दिया है AR रहमान ने।

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत गीत जिसे हमने लिया था फिल्म लगान से। आवाजें थी AR रहमान, अलका याग्निक, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, शान और शेयर की। जावेद अख्तर साहब के शब्द थे और संगीत निर्देशन था AR रहमान का। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रकाश जी, आप अधिवक्ता हैं और आप जानते हैं कि बाल श्रम को लेकर कई तरह के कानून भी बनाए गए हैं। कानून के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाल श्रम से जुड़े हुए कौन कौन से कानून हैं।
1: अगर बात करें कानून और संविधान की, तो अपने भारत में बाल श्रम रोकने के लिए संविधान और कानून ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं। तो अगर बात करें संविधान की, तो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 24 जो है, वो 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए बनाया गया है और इन बच्चों को कारखानों, भूमिगत खानों और अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित करने से प्रतिबंधित किया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 21A है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 39E और F है, यह अनुच्छेद राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बच्चे के स्वास्थ्य और विकास का कहीं शोषण ना हो सके
2: जी।
1: इसके अलावा जो ये है कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986, जिसका संशोधन 2016 में भी किया गया है
2: जी।
1: तो इस कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी व्यवसाय या रोजगार में काम पर रखना प्रतिबंधित है। इसके अलावा 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक उद्योगों एवं परियोजना जो होती ऐसे ही है उसमें नियोजित नहीं किया जा सकता है, और इसका उल्लंघन करने वाले नियोजकों को कारावास या जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इस कानून में प्रत्येक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मिलता है
2: जी।
1: इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम 2015
2: जी,
1: इसमें ऐसी व्यवस्था है कि इस कानून के तहत बच्चों के शोषण और उपेक्षा के विरुद्ध संरक्षण मिलता है। बाल श्रम में लिप्त पाए जाने वाले मामलों में बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में संरक्षण दिया जा सकता है
2: जी।
1: और इन सब के अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड जैसी संस्थाएं भी बाल श्रम के लिए काम करती हैं
2: जी।
1: अब ये बात करें बाल श्रम की, तो ये केवल कानून का उल्लंघन ही नहीं है
2: जी,
1: बल्कि यह मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। प्रत्येक बच्चे को जन्म से ही कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त होते हैं
2: जी।
1: जैसे जीवन का अधिकार उनको मिलता है, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार उन्हें मिलता है और सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार उन्हें मिलता है। साथ ही खेल और मनोरंजन प्राप्त करने का उनको अधिकार मिलता है। तो जब किसी बच्चे को मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता है तो उससे ये सभी अधिकार प्रभावित होते हैं
2: जी।
1: इसीलिए बाल श्रम को केवल न्यायिक समस्या कहना गलत होगा, यह मानव गरिमा और सामाजिक न्याय का भी मुद्दा है
2: जी।
1: तो इन सब कानून के देखते हुए भारतीय न्यायपालिका ने समय समय पर बाल श्रम के विरुद्ध बहुत सारे निर्णय भी दिए हुए हैं, जिसमें बहुत एक महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है जो कि है MC मेहता वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें ये मामला जो है ये तमिलनाडु के शिवकाशी, जहाँ पर माचिस और पटाखा के बहुत सारे कारखाने हैं। बचपन में हमने या आपने भी मुर्गा छा पटाखा देखा होगा
2: जी।
1: वो भी शिवकाशी में ही बनाया जाता है और इन कारखानों में बहुत से बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। ये मामला भी यही शिवकाशी में बाल श्रमिकों के शोषण से संबंधित था
2: जी।
1: तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि खतरनाक उद्योगों में बच्चों का नियोजन संविधान के अनुच्छेद 24 का सरासर उल्लंघन है
2: जी।
1: इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अपने फैसले में उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक बाल श्रमिक के लिए नियोक्ता 20,000 रुपये का मुआवजा देगा
2: जी।
1: बच्चों के पुनर्वास हेतु कल्याण कोष बनाया जाए, बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, परिवार के एक वयस्क सदस्य को रोजगार देने का प्रयास किया जाए। एक और के संदर्भ है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया
2: जी।
1: इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम के मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राज्य का दायित्व है कि बच्चों और श्रमिकों को शोषण से बचाए तथा संविधान के अनुच्छेद 21, 23 और 24 को और ज्यादा प्रभावी बनाए
2: जी।
1: और एक और मामला है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, केस को एशियाड वर्कर्स केस के नाम से भी जाना जाता है
2: जी।
1: इसमें न्यायालय ने कहा कि बच्चों को प्रतिबंधित कार्य कराना संविधान के अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है और राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि वह रोके।
0: प्रकाश जी, बाल श्रम और शिक्षा, इनका आपस में क्या संबंध है?
1: हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। तो शिक्षा और बाल श्रम एक दूसरे के उल्टा है, यानी जहाँ शिक्षा होगी वहाँ बाल श्रम कम होगा
2: जी।
1: और जहाँ

0: श्रम होगा वहाँ शिक्षा प्रभावित होगी। अगर कोई बच्चा रोज 8 से 10 घंटे तक काम करेगा तो समझने की बात है कि वो स्कूल कैसे जाएगा वो
1: जी।
0: और यदि वह स्कूल नहीं जाएगा तो उसका कौशल विकास होगा ही नहीं, और यदि बच्चों का कौशल विकास नहीं होगा तो कौशल विकास भविष्य में भी वह कम आय वाले कामों में ही उलझा रहेगा और उसकी आय जो है कम आय वाले जगह पर ही सीमित रह जाएगी
1: जी। प्रकाश जी, बहुत लोग ऐसा कहते हैं और सोचते हैं कि बाल श्रम से आर्थिक विकास होगा, आपका क्या कहना है, क्या राय है आपकी?
0: हाँ रवि जी, समाज में धारणा तो ऐसी ही है। कुछ लोग तर्क ये देते हैं कि गरीब परिवार के लिए बच्चों की कमाई आवश्यक है तथा इससे आर्थिक विकास भी होता है, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञों का ये मत है कि बाल श्रम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकाल नुकसान ही पहुंचाता है। क्यों ऐसा होता है
1: जी?
0: क्योंकि इससे बच्चों की शिक्षा रुक जाती है, वो कम उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं जिससे उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है। इससे और क्या होगा कि कुशल मानव संसाधन विकसित नहीं हो पाते हैं। जो बच्चे कल पढ़ाई करते, अच्छा पढ़ाई कर, स्किल डेवलप करते और अच्छे कामों में लगते, उनका वो विकास रुक गया और वहीं पर वो सीमित हो जाते हैं। इससे क्या है कि प्रोडक्शन घट जाता है और ग्रेवी एज इट इज बनी रहेगी, आर्थिक जो असमानता जो है वो भी समान रूप से बढ़ जाती है। तो अगर इन सब पहलुओं को विचार करें तो बाल श्रम जो है राष्ट्र के विकास में ही बाधक है और इससे जो आय बढ़ने की बात हो रही है ये धारणा बिल्कुल ही गलत है।
1: वकील साहब, कोविड के दौरान की हम बात करते हैं तो कोविड ने हर वर्ग को, हर चीजों को प्रभावित किया, बाल श्रम भी प्रभावित हुआ, अब क्या कहना चाहेंगे?
0: कोविड से समाज के हर वर्ग मतलब कि इसे प्रभावित हुआ तो बच्चे भी इसे प्रभावित हुए हैं। कोविड महामारी के दौरान क्या हुआ कि अनेक परिवारों की आय जो है वो प्रभावित हो गई, जिसका सबसे इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ कि कई बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया आर्थिक तंगी के कारण। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण बाल श्रम का जोखिम बढ़ गया
1: जी।
0: इस घटना से पता चलता है कि आर्थिक संकट का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों पर ही पड़ता है और इससे बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है
1: जी। प्रकाश जी, बाल श्रम में भी लैंगिक भेदभाव होते हैं?
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बाल श्रम जो है इसका प्रभाव लड़कों और लड़कियों पर अलग अलग पड़ता है
1: जी।
0: लड़के जो होते हैं बाल श्रमिक के रूप में अक्सर दुकानों में, कारखानों में और खेतों में काम करते हैं, और लड़कियां जो है वो घरेलू काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती हैं, और इस तरह काम करने के लिए लड़कियां मजबूर हो जाती हैं। कई बार तो लड़कियां जो घरों में काम करती हैं उनका वो श्रम दिखाई भी नहीं पड़ता है, इसलिए लड़कियां जो हैं इसमें दोहरे शोषण का शिकार बन जाती हैं।
1: वकील साहब, बाल श्रम को दूर करने के लिए सरकार भी जो है समय समय पर कुछ कदम उठाते रहती है, सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं जो बहुत प्रभावी भी होते हैं और इसका रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो भारत सरकार और राज्य सरकारों ने इसके लिए कई कार्यक्रम चला रखा है, जिसके लिए महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण है निःशुल्क शिक्षा, जिससे बच्चों को प्राइमरी स्तर पर सारे बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाता है ताकि अगर वो पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई अधूरी न रह जाए। दूसरा क्या है कि ध्यान भोजन, बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन खाने के लिए फिर वो उनको कल भटकना पड़ता है, तो ऐसी व्यवस्था किया गया है कि दोपहर में बच्चों को खाना भी स्कूल में ही मिले ताकि वो इस प्रॉब्लम से भी वो निश्चिंत रहें। तो ये सब योजनाएं जो हैं इन सब का उद्देश्य एक ही है कि बच्चों को स्कूल में बुलाएं और वहां उनकी उपस्थिति को बनाए रखा जाए, और इसमें बहुत सारी सफलता भी मिल रही है। तो एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है ये जो बाल श्रम को रोक सकता है, और इसके अलावा समाज में सामाजिक रूप से एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा सकता है जिससे लोग इसको देखें, समझें और बाल श्रम को रोकने में इसको अपना योगदान दें।
1: प्रकाश जी, अंत में बाल श्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: अंत में ये बस यही कह सकते हैं कि बाल श्रम एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो बच्चों के भविष्य, समाज की एकता और राष्ट्र के विकास तीनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यह केवल एक कानूनी मामला नहीं है बल्कि मानवता का प्रश्न भी है। इसकी समाप्ति के लिए एक बहुआयामी, समन्वित और दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है
1: जी।
0: जब तक हर बच्चा स्कूल नहीं जाता, खेल नहीं पाता और सपने नहीं देख पाता, तब तक विकसित भारत की कल्पना अधूरी है
1: जी। अधिवक्ता प्रकाश सिंह बादल जी, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इससे महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत की और हमारे सुनने वाले श्रोताओं को जानकारियां दी। इसके लिए रेडियो परिवार की ओर से और साथ ही साथ अपने सुनने वाले सभी श्रोताओं की ओर से पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी।
1: तो श्रोताओं, कार्यक्रम में इस विषय पर अभी हम बातचीत कर रहे थे जिले के वरीय अधिवक्ता प्रकाश सिंह बादल जी से। तो इसी के साथ श्रम संसार कार्यक्रम का आज का यह एपिसोड अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के अगले अंक में हम आप सबों से नए विषय के साथ फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वर रवि भूषण साहू, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे श्रम संसार। भेंट वार्ता बाल श्रम विषय पर वरीय अधिवक्ता प्रकाश सिंह बादल से रवि भूषण साहू की बातचीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक माधुरी, भोजपुरी एल्बम लोक गीतों पर आधारित ये प्रोग्राम। कार्यक्रम रसधार के बाद भी जारी रखा जाएगा। फिलहाल आइए सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का प्रोग्राम रसधार।

इसी भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स के साथ ही कार्यक्रम रसधार अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए अब सुनिए लोक माधुरी।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राजभासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं। और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आया तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। कुटुंब पंचायत से अनीता कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मैसेल्फ अनीता कुमारी फ्रॉम कुटुंबा पंचायत डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। मैंने अपने गांव में बहुत सारे काम किए हैं, जैसे WPUS प्रोसेसिंग यूनिट और चाइल्ड एजुकेशन और ओल्ड एज पेंशन, नली गली, छठ घाट निर्माण, वुमेन एजुकेशन। गांव में लाइब्रेरी भी खुलवाई हूँ ताकि जो बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं और घर में वो लोग को लाइट के बिना सुविधा नहीं मिल पाता है, वहाँ बैठ के वो लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और बड़े होकर कुछ बन सकते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गाँव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गाँव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अरुणा पंचायत से आशा देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। मैं जब 2016 में जीती थी तो हम लोग का गाँव में बहुत कठिनाई आती थी कि गली में बहुत कचरा और पानी भर जाता था, रोड नहीं था, नली नहीं था। पहले हम लोग वो काम किए, इसके बाद देखे कि बहुत लाचार और गरीब जो झोपड़ी में रहते थे उसको रहने का जगह नहीं था और गरीब था, उसको कमाने का कोई खाने का कोई अथी नहीं था, उन लोग हम लोग को काम दिए हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। अब से कुछ ही देर बाद आप जुड़ेंगे विविध भारती से, तत्पश्चात हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर 12 बजे। 12:05 पर यादों की महफिल, विविध भारती की गीतमाला, इसका लुत्फ लेंगे आप। 2 बजे प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। रोजगार सूचना 2:10 पर और 2:30 पर सदाबहार नगमे, फिल्मी गीत, सखी सहेली, आज के मेहमान, ये सभी कार्यक्रम सुनेंगे विविध भारती से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आइए अब चलते हैं आपको लेकर कार्यक्रम रंग तरंग के लिए विविध भारती।

आयुष्मान खुराना की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विकी डोनर फिल्म से। आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली का लिखा ये गीत था। रोचक कोहली आयुष्मान खुराना की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग।

0: आप सुन रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये गज़ल, रफ़ीक हुसैन और रफ़ीक जयपुरी की लिखी ये गज़ल थी, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की तर्ज थी।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: पामेला सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे सईद जाही का कलाम।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: विजू शाह का सर्वाधिकया ये गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर की रचना थी, आवाजें थी पंकज उदास और साधना सरगम की। मोहरा फिल्म का गीत आपने सुना।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अलीशा चिनॉय को आपने सुना एल्बम थी मेड इन इंडिया। अलीशा चिनॉय बिड्डू और श्याम अनुरागी का लिखा ये गीता बिड्डू की तर्ज थी।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की

0: गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीराम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीराम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीराम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वाशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: पुनर्मिलन फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी, आशा भोसले का गाया, गुलशन बावरा के बोल थे, सी अर्जुन का संगीत था।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
3: बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूर नहीं रह सकता, एक बिन, तेरे बिन।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती का ये कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: राहुल देव बर्मन की तर्ज थी मजरू सुल्तान परी की रचना, आपने सुनी मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म थी तीसरी मंजिल।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

आप सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा संगीत था सचिन देव बर्मन का, फिल्म तीन देवियां का गीत आपने सुना।

0: टोबी नैयर के संगीत निर्देशन में कश्मीरी का लिखा ये गीत आपने सुना, आशा भोसले की आवाज में। फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: नारायण बख्शी का लिखा सूरज और चंदा फिल्म का गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में। तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: की गुड़िया फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और आनंद बख्शी के की आवाजों में। आनंद बख्शी की बोल थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज थी।
1: कहूंगा एक बार नहीं हजार बार कहूंगा, तुम चोर हो चोर हो चोर हो।
2: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा, बोलो क्या चुराया है?
3: मेरा दिल।
2: क्या

समझी अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हट तेरा रंग।

कहूँ मैं खरे खरे, जाती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को बता दूँ मैं। पास अगर तू आ जाए सांस सांस टकरा जाए, दिल क्यों धड़कता है तुझको।

कहूँ मैं खरे खरे, जाती है क्यों परे परे, तेरी जिंदगी में आ जा प्यार को बता दूँ मैं। पास अगर तू आ जाए सांस सांस टकरा जाए, दिल क्यों धड़कता है तुझे।

राती चटके फसेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला हाय हाय

खुमार बारावंकवी की रचना आपने सुनी, नौशाद का संगीत था, साज और आवाज़ फिल्म में यह आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। अब यादों की महफिल, ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्रोताओं कार्यक्रम सुरीला सफर में, क्योंकि ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है आपके रेडियो सेट पर। श्रोताओं, मौसम कोई भी हो, कहीं रिमझिम की फुहार है, कहीं सूरज की तपिश, ये आप बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे होंगे आजकल। तो मौसम कोई भी हो, हर पल आपके संग है विविध भारती, आपके रेडियो सेट पर है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बातें हैं और हम हैं, आप हैं, साथ साथ कार्यक्रम है सुरीला सफर। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज की इबारत को लेकर अपनी बातें लिखी हैं, और कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो नहीं लिखे हैं। तो बस आप अपनी जो है बातें लिखिए, और आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai, और हमारे नए श्रोता भी जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। और अब आज की इबारत आपके लिए पढ़ देते हैं। क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है? क्या सचमुच पलकों के पीछे छुपकर कोई कुछ कह जाता है? क्या काजल सचमुच नैनों में बसता है? हो ना हो, लेकिन ये गलत फहमियों का जहां भी कुछ कम खूबसूरत तो नहीं। रेत का समंदर, जरा सोच कर देखो, अगर ये दिल ना होता, जज्बातों का रंग महल, जितने दरवाजे उतने पहलू, उतने अरमा उतनी ही ताबीरें। इश्क के असर को छुपाए कि मोहब्बत क्या सचमुच लाखों में एक हसीन होती है, या फिर शायद कस्तूरी की तरह जो चोरी चोरी चुपके चुपके शाही पान में खुशबू बिखेर जाती है। न रखो गलत फहमियाँ, न पूछो भला शबनम मुस्कुराती कब है, रात कब जागती है। देखो कि दिल टूटे नहीं, कोई रूठे नहीं, खुश फहमियों का जहाँ कुछ रहने भी दें। जब सुलझ जाए गलत फहमियों की रेशमी डोर, बदगुमानी के बादल जब हट जाएं, जब मोहब्बत के दीप जलें, तुम आ जाना। अजब फहमी गलत फहमी के दरमियान हूँ इबारत, मैं तुझे लिखती हूँ कि तू मुझे लिखता है। श्रोताओं, आप समझ ही गए हैं कि आज दरमियां होती गलत फहमियों की बातें हम करने जा रहे हैं, और बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी जो बातें हैं वो इसको लेकर लिखी भी हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि क्या आपके जीवन में कभी गलत फहमियों का दौर आया, और आपने इस दौर को किस तरह, किस खूबसूरती से निभाया, ये आप हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि कई बार गलत फहमियाँ जो होती हैं वो होती हैं, और बड़े मनमुटाव भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार गलत फहमियों के बावजूद भी बड़ा प्यार उमड़ता है। हमारे सभी श्रोताओं का फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

अभिनेत्री नंदा और राजेश खन्ना पर फिल्म आया गया ये गीत था द ट्रेन फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, आर डी बर्मन की तर्ज थी और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि हम खुश फहमी और गलत फहमी के माया जाल में जकड़े हुए हैं, हमें लगता है जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और हम तारीफ के काबिल हैं, जब भ्रम टूटता है तो गलत फहमी का सत्य स्वीकारना पड़ता है। और इन्होंने गीत जो चुना है जब दीप चले आना, तो देखते हैं कि कौन कौन से गीत आज के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वैसे आज की फिल्में भी आप जरा ध्यान दीजिए श्रोताओं, ये फिल्में भी कुछ इसी तरह की हैं, द ट्रेन और आगे भी जो फिल्में आप जिनके गीत आप सुनेंगे उन्हें आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आपने वो फिल्में देखी हैं तो उनके बारे में आप बता भी सकते हैं कि उनमें क्या गलत फहमियां थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि गलत फहमियां भ्रम भ्रांति यानी जीवन का एक छुपा हुआ राज जो प्यार मोहब्बत में बहुत खूबसूरत लगता है, जो रेत का समंदर यानी अधूरी चाहतें पूरी कर देता है, सुहाने सपने सजाता है, मन की उम्मीदें बढ़ाता है, कल्पना रम्य सुख देता है, प्यार का कोमल मोहक आनंद लुटाकर खुश कर देता है। गलत फहमी को खुश फहमी बना देने वाली आज की सकारात्मक इबारत है। और वो चांद मुस्कुराया और पलकों के पीछे क्या तूने कह डाला मुझसे भला काजल तेरा रंग महल के दस्तरवाजे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत का मुख्य विषय भ्रम और यथार्थ तथा प्रेम की अनुभूति है, यहाँ तार्किक सत्य के बजाय खुश फहमियों के रोमांटिक संसार की को तरजीह दिया गया है, क्योंकि यही जीवन और प्रेम को जीने का हौसला देते हैं। भाषा बेहद काव्यात्मक संवेदात्मक और उर्दू

हिंदी के खूबसूरत मिश्रण जैसे जज्बात, ताबीरें, बदगुमानी, इबारत ऐसे सजी है। इसमें गद्य होते हुए भी एक लय और संगीत है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज कहीं जाना है लेकिन गीत तो सुनती रहूंगी। एक गीत जिसका मुझे बहुत इंतजार रहेगा आपकी इबारत में, ये शब्द रंग महल के 10 दरवाजे। तो देखते हैं, और पलकों के पीछे भी इन्होंने चुना है, देखते हैं कौन कौन से गीत आज होते हैं शामिल। और एक और श्रोता ने चांद तू जब भी मुस्कुराता है, पलकों के पीछे से कचरारे कचरारे, ये दिल ना होता बेचारा, रंग महल। और एक और श्रोता जिन्होंने कुछ शब्द इसमें से चुने हैं, ये शब्द हैं कि चांद पलकों के पीछे, रंग महल, हसीना चोरी चोरी चुपके चुपके, शबनम रेशम की डोर, दीप हो सकते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि नैनों में दर्पण है, चांद आहें भरेगा पलकों के पीछे से, और लाखों हैं निगाह में। इन्होंने भी बहुत सारे गीतों को पसंद किया है। तो अगला गीत आपको सुनवा देते हैं, और आपको बताना है कि ये जो फिल्म है श्रोताओं, इसमें मुख्य अभिनेत्री कौन है। और कई बार आपको भी बहुत सारी गलतफहमियां हो जाती होंगी। कभी दो अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनके कपड़ों को लेकर, कभी कोई गिफ्ट अदल बदल जाता है, कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, या फिर बहुत बड़ी गलतफहमियां देखने को मिलती हैं जब हम रेलवे के सफर पर होते हैं। तो ऐसी कुछ यादें अगर आपकी हैं तो आप हमसे ज़रूर साझा करें।

0: देवानंद साहब की एक बड़ी अजीब अदा इस गीत में नजर आती है श्रोताओं। उनके हाथ में एक चीज है, क्या आप ने ध्यान दिया है तो आप हमें जरूर लिखकर बताएं। और एक अभिनेत्री जो नजर आ रही हैं वो तो तनुजा हैं, दूसरी अभिनेत्री के बारे में हमने आपसे पूछा है तो आप हमें जल्दी से इसका जवाब भेज दें। और वैसे जो सवाल हमने पूछे हैं उसके बहुत सारे जवाब भी हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं अपने सभी श्रोताओं का हमारे गद्यांश को पढ़ने के लिए और उस पर कमेंट्स करने के लिए, अपने गीत और अपनी बातें हमसे साझा करने के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जीवन दर्शन की बहुत ही गहरी बात को एक रूपक के रूप में दर्शाया गया है। जिंदगी कोई गणित या सीधा समीकरण नहीं बल्कि भावनाओं, उम्मीदों और एहसासों से बुना हुआ एक ऐसा कैनवास है जहां खूबसूरत गलत फहमियां ही इसके रंग को जीवंत बनाती हैं। जीवन की कला इन्हीं कोमल भावनाओं और गलत फहमियों को संजोने में है। कभी कभी किसी बात को सकारात्मक रूप से मान लेना भले ही वो पूरी तरह से सच न हो, जीवन को जीने योग्य और खूबसूरत बना देता है। गलत फहमियां अक्सर वे उम्मीदें और सपने होते हैं। तो एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती का सुरीला सफर, ये एक सफर कल कौन सी इबारत आएगी, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर भी गलत फहमी और खुश फहमी के दो पहियों के बीच पिसता फंसता चला जाता है, चलता रहता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां विचारों, शब्दों या इरादे का गलत अर्थ गठन होता रहता है, कभी धूप तो कभी छांव। और इन्होंने एक और हमारी एक और श्रोता लिखती है कि चांद जाने कहां खो गया, आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं, हुस्न से चांद भी शर्माया है। और कुछ गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आदमी की जिंदगी खुशफहमी और गलत फहमी से भरी हुई है। मुझे खुशफहमी रहती है कि मेरी कमेंट अच्छी है और आप पढ़ेंगे जरूर, लेकिन पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, आप कमेंट नहीं पढ़ती, तब महसूस होता है कि मैं कितनी बड़ी गलत फहमी में था। तो ये भी गलत फहमी हो सकती है आपको भी और मुझे भी, क्योंकि मैंने, ऐसा मुझे याद पड़ता है, मैंने कई बार आपकी कमेंट पढ़ी है, तो हो सकता है कि यहां भी कुछ गलत फहमी हो। बहरहाल जो गलत फहमियां हैं उन्हें मिटा देना ही ज्यादा अच्छा होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत आज की इबारत की पहली लाइन, क्या सचमुच चांद मुस्कुराता है, आपका जवाब इन गानों में मिल गया। जी हाँ, ये चांद सा रोशन चेहरा, शमी कपूर का रोमांस और चांद, क्या बात है। इन्होंने अपनी तरह से गीतों को चुना है। एक और श्रोता लिखती है कि अजीब कश्मकश है ये यकीन और गुमान के बीच, मैं खुद को तुझ में ढूंढती हूँ या तो मुझ में ठहर जाता है, अजब बंदिश अजब आजादी के दरमियान हूँ, किताब मैं तुझे पढ़ती हूँ कि तू मुझे पढ़ता है, क्या बात है। और इसी तरह का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं। शशि कपूर इस फिल्म में है और क्या रोल है उनका इस फिल्म में, क्या आप बता सकते हैं?
1: रवि

शशि कपूर एक इंजीनियर के किरदार में होते हैं श्रोताओं। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत था। इस फिल्म में बड़ी अजब सी ये गलतफहमी थी जो चेहरे को लेकर थी, और अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। वल्लभ भाई पटेल का लिखा ये गीत था, लता मंगेशकर भूपेंद्र की आवाजें थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि वो चांद खिला, वो तारे हंसे, आंखों में काजल, नैनों में बदरा छाए, और बहुत सारे गीतों को इन्होंने चुना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की डोर को हकीकत से ज्यादा गलत फहमियां कमजोर करती हैं। सच्चाई और बातचीत के अभाव में पनपी ये अजब फहमियां करीबियों में दूरियां पैदा करती हैं। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहना कुछ था वो कुछ समझे, और मुझे कुछ और कहना था। जी हाँ, लेकिन अगर ये गलत फहमियां हो जाएं तो आप एक काम कर सकते हैं कि मोबाइल पर बात कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से ही कुछ मना सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपके बीच कोई अनबन हो जाए तो आप एक दूसरे को किस तरह से मनाते हैं, ये गलत फहमियां किस तरह से दूर करते हैं, क्योंकि ये भी समझदारी की ही बात होती है श्रोताओं। गलत फहमियों में कुछ रखा नहीं है, जो खुशफहमियां हैं वो और गलत फहमियां, इन दोनों में बड़ा बारीक सा रेशम के सा अंतर होता है, इसे पहचानने की जरूरत है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने, एक जब दीप जले आना जब शाम ढले जाना, दो दिल के टुकड़े टुकड़े करके, और इन्होंने भी अपनी जो एक लिस्ट है वो बनाई है। एक और श्रोता लिखती हैं, गलत फहमियां रिश्तों में दूरियां बढ़ाती हैं, जबकि खुश फहमियां मुस्कुराने का एक बहाना बन जाती हैं। जब मन की धुंध छट जाती है, बदगुमानी के बादल हट जाते हैं और विश्वास के दीप जल उठते हैं, तब मोहब्बत अपने असली रंग में खिलती है। लेकिन हर गलत फहमी बुरी नहीं होती, कुछ खुश फहमियां रिश्तों में महक बनकर रहती हैं, विरेत के समंदर में दूर दिखाई देती हैं, उस नमी की तरह जो भले ही हाथ में ना आए लेकिन सफर को उम्मीद और दिल को मुस्कान दे जाती है। जब रेत की बात है श्रोताओं, तो रेत में अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि

नदी है या समंदर है, इसे क्या कहते हैं? अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। और एक और बात है कि कस्तूरी मृग जो है उसे हमेशा ये गलतफहमी होती है कि कस्तूरी कहीं और है, इस बारे में आप क्या जानते हैं तो हमें जरूर बताएं। इस फिल्म में एक्ट्रेस के दो रोल को आपको बताना है नाम।

दो जुड़वा लड़कियों को लेकर जो ये फिल्म बनी थी, इसमें गजब का सस्पेंस था। श्रोताओं, मेरा साया फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। राजा मेहती अली खां के बोलते मदन मोहन का संगीत था। और हमने आपसे पूछा था कि दो नाम कौन से थे अभिनेत्री साधना के, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा है वो भी जरूर हमें बताएं। और गीता और निशा, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म का कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? श्रोताओं, अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि रेल के सफर के दौरान बड़ी सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप हमें जरूर लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की हमारी जो इबारत है, मैं हमको तो पता भी नहीं चला कि हम चांद से रेत पर आ गए और चांद से रेत पर आ गए और बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार भी हुए हो गए, इस साजिश में कब फंसे पता भी नहीं चला। एक और श्रोता लिखते हैं कि ज्वेलथीफ का जो गीत हमने आपको सुनाया, उसमें मछली पकड़ने का कांटा और साथ में उसमें फंसी मछली है। जी हाँ, एक सवाल और पूछा था कि कौन है उसमें मुख्य अभिनेत्री, तो वैजयंती माला थी। एक और श्रोता ने लिखा है, अगर दिल से एहसास, उम्मीदें और ये प्यारे भ्रम निकाल दिए जाएं तो जीवन एक अंतहीन रेत के समंदर जैसा

जर हो जाएगा, जहां फैलाव तो बहुत होगा पर सुकून की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी। वास्तव में हमारी कल्पनाएं ही इस रसीन जिंदगी में रस घोलती हैं, जैसे कस्तूरी अपनी खामोश खुशबू से पूरे माहौल को महका देती है। ठीक वैसे ही जज्बात इंसानी रिश्तों को जो हैं जिंदा रखते हैं। कभी कभी जिंदगी को मरुस्थल बनने से बचाने के लिए तर्कों को परे रखना पड़ता है, क्योंकि जब इंसान दिल की गहराइयों से जुड़ता है तभी वो रिश्तों के असली रूप को जी पाता है और जीवन में प्रेम के दीप जलते हैं। क्या ही सुंदर बात इन्होंने लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं, इबारत के लिखने के दायित्व को सौंपने के क्रम में अग्रसर हो रही प्रस्तुत आज की इबारत मन के भेदों में निहित अंतर्द्वंद को भली भांति स्पष्ट कर रही है और इस दृष्टिकोण से ही आज की ये इबारत स्वयं में ही इबादत करने योग्य है। एक और श्रोता लिखती है कि मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिश अधूरी, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियां भी जरूरी हैं।

ये गलत फहमी भी श्रोताओं अपने आप में बड़ी खास होती है कि जिधर देखो बस एक ही तस्वीर नजर आती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप बैठे कहीं और हैं लेकिन आपको बस वही वो दिखता है या दिखती हैं या दिखती हैं चीजें जिन्हें आप मन में सोच रहे होते हैं, मसलन जब आप समुन्द्र किनारे बैठते हैं।

इस गीत में श्रोताओं और इस फिल्म में सांपों के बारे में बहुत कुछ है या सांप के बारे में बहुत कुछ है। वैसे रस्सी और सांप, इनमें तो बहुत गलत फहमियां होती हैं। क्या आपको हुई हैं?

नागिन फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि खुशफहमियां और गलत फहमियों में के बीच क्या क्या होता है, दो दिलों में कैसी कैसी शरारतें पैदा होती हैं, तरह तरह के गीतों का मजा लेते हैं इस कार्यक्रम में। एक और श्रोता लिखते हैं कि गलत फहमियां जिंदगी में अक्सर गलत फहमियां हो जाती हैं, कभी हम व्यर्थ की खुशफहमी पाले रहते हैं, परिणाम जब इसके विपरीत आते हैं तो पता चलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कस्तूरी सुख है, हिरण रूपी चैतन्य आत्मा में कस्तूरी सुख है और नाभि यानी वर्तमान पर्याय में है। जी हाँ, ये तो है ही है, काव्यात्मक तरीके से आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने आपसे ये पूछा था कि कस्तूरी मृग क्यों वन वन घूमता है। जी हाँ, वो तो कस्तूरी की सुगंध के पीछे घूमता है श्रोताओं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो कस्तूरी है वो कहीं और है, लेकिन ये तो कोरा भ्रम होता है, वो तो उसकी नाभि में होती है। इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा था और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस सवाल के जवाब को दिया भी है, देने की कोशिश भी की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कई दिनों से घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ इन्होंने बड़ी ही बड़े प्यार से कह सकते हैं कि कमेंट लिख दिया है कि घरवाली के साथ शीत युद्ध चल रहा है, सिर्फ मूछों को लेकर संसार आसार है, छोटी छोटी बातों पे बवाल होते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं यही गलत फहमियाँ पैदा करती हैं, और कभी कभी ये जब खुश फहमियाँ बन जाती हैं तो कभी थोड़ा सा हम खुश भी हो लेते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि गलत फहमी पे मैं बताना चाहूँगा, मेरी धर्मपत्नी जुड़वा हैं, अपनी जुड़वा बहन से सिर्फ 10 मिनट छोटी हैं, दोनों एक ही स्कूल में हैं और एक ही क्लास में पढ़ती थीं। धर्मपत्नी ने मुझे सगाई के बाद बताया कि उन्हें टीचर्स ने गलतफहमी से बचने के लिए कह रखा था कि स्कूल जब भी आए तो साली साहिबा एक चोटी बनाएं और धर्मपत्नी पत्नी दो चोटी रखें। मैं बताना चाहूँगा कि मुझे दोनों को पहचानने में गलतफहमी नहीं होती, तो ये तो अच्छी बात है, और इस तरह से जुड़वा बच्चों में भी होता है श्रोताओं। तो जो एक गलतफहमियां जीवन में होती हैं वो तो होती रहती हैं, लेकिन हमें किस तरह से इससे निपटना है और कुछ एक तरीका तो गोलमाल फिल्म में जो अमोल पालेकर हैं उन्होंने भी बताया है। तो आप हमें बताएं कि ये दो नाम कौन से थे, और संजीव कुमार की एक फिल्म थी जो गलतफहमियों पर आधारित थी, जिसमें देवेंद्र वर्मा भी थे, मौसमी चटर्जी भी थी और बहुत सारे कलाकार थे। तो आप बताएं उस फिल्म के बारे में।

काटी पतंग फिल्म का ये गीत था जो गलत फहमियों पर आधारित ये फिल्म थी श्रोताओं, और अभी तक जो गीत हमने लिए हैं वो ऐसी ही फिल्मों से हमने लिए हैं। तो ये जो फिल्मों के गीत आप सुन रहे हैं इनमें कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा पसंद है ये आप चाहें तो बता सकते हैं। और गोलमाल फिल्म के कैरेक्टर जो हैं उनके बारे में हमने आपसे पूछा था, अमोल पालेकर के बारे में, और एक फिल्म संजीव कुमार की थी जिसमें देवेंद्र वर्मा और ये शेक्सपियर के उपन्यास पर थी। तो आप इसके बारे में भी अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गलतफहमी और भ्रम दोनों ही मानसिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भ्रामक स्थितियां हैं, लेकिन दोनों के मूल कारणों और प्रभावों में गहरा अंतर है। जहां गलतफहमी दो लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान में कमी का परिणाम है, वहीं भ्रम व्यक्ति की स्वयं की समझने की क्षमता में त्रुटि या मानसिक विकार है। एक और श्रोता ने लिखा है, फिल्म ज्वेल थीफ देवानंद, अशोक कुमार, वैजयंती माला, पूरी फिल्म में लगता है कि देवानंद ही हैं जो असल जो चोर हैं, लेकिन वैजयंती माला का पहचान की इन्होंने मतलब फिल्म की जो बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि अक्सर हम जागते हुए भी सपनों को देखते हैं और कल्पना लोक में पहुंचकर बहुत कुछ देखते हैं, पर असलियत में वहां कुछ भी नहीं होता। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि यहां भी हमें गलतफहमी होती है, जी हाँ, कई बार। और एक और श्रोता ने लिखा है कि साधना जो दो रोल में है मेरा साया फिल्म में, एक सुनील दत्त की पत्नी और दूसरी डाकू के गिरोह की सदस्य थी। एक सवाल आपसे पूछते हैं श्रोताओं कि दो जो गायिकाएं हैं उनके नाम आप पहचानिए और सोचिए कि जब आप उनके गीत सुनते हैं तो क्या आपको कोई गलतफहमी होती है कि ये गीत किसने गाया है, इन्होंने गाया या इन्होंने गाया।

ये दो सहेलियां हैं, वो बातें कर रही हैं, बता रही हैं कि उनके महबूब की क्या पहचान है, क्योंकि गलतफहमी ना हो जाए इस वजह से। एक और श्रोता ने लिखा है कि झुमका गिरा रे, ये गीत बहुत अच्छा लगता है मेरा साया फिल्म का। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा साया फिल्म के तो सभी गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन नैनो में बदरा छाए गीत सुनो तो अनुभूति का स्तर जो होता है वो अलग होता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि इसी सवाल के लिए जो हमने आपसे पूछा था कि मृग तृष्णा के बारे में उन्होंने लिखा है कि जो रेत में अक्सर या रेत के समंदर की तरह नजर आती है, ऐसा लगता है कि दूर पानी है लेकिन पानी वहां होता नहीं। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, दो गायिकाएं हैं, क्या उनके गीत में आपको कुछ गलतफहमियां आवाज में होती हैं? तो अगर आप पहचान रहे हैं इन्हें तो आप जरूर लिखें। और सफर के दरमियान भी हमने आपसे पूछा था कि बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप लिख सकते हैं।

आपकी कसम फिल्म का ये गीत था मुमताज पर फिल्माया गया, लता मंगेशकर की आवाज थी और श्रोताओं दो जो कलाकार हैं गायक कलाकार उनके बारे में हमने आपसे पूछा था। ये लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर जी की बात हम कर रहे थे क्योंकि इनके गाए हुए बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसमें बड़ी सारी गलतफहमियां हो जाती हैं कि किस गीत को किसने गाया है। एक और श्रोता लिखती हैं कि संजीव कुमार मौसमी चटर्जी अभिनीत फिल्म इतनी सी बात का इन्होंने जिक्र किया है। जी हाँ, हम लेकिन बात कर रहे हैं फिल्म अंगूर की। और एक और श्रोता लिखती हैं कि पारिवारिक सामाजिक ज्वलंत विषय पर आधारित फिल्में हैं ये, ऐसी गलतफहमी अगर आ जाए तो बैठकर सुलझा लें, नहीं तो कितनी जिंदगियां जिंदगी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी महबूब फिल्म के बारे में कि अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म ये थी, साधना पर फिल्माया गया गीत था और साथ ही अमिता भी नजर आती हैं श्रोताओं, और इस गीत के बारे में भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्दों से ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज और लहजा माने रखता है, यदि कहे गए शब्द और बोलने का तरीका मेल नहीं खाते तो गलतफहमी हो जाती है। कई बार लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बात रखने का इंतजार करते हैं या आधा सुनकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आपको फिल्म और कलाकार बताने हैं।

चिच्चोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं और हमने जो आपसे सवाल पूछा था श्रोताओ, इस फिल्म में सुनील और विनोद के बीच एक बड़ी गलतफहमी होती है। गोलमाल फिल्म में राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद हैं और अंगूर में संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा क्रमशः अशोक और बहादुर की भूमिका में।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि पीपीजी रामजी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने जी राम जी योजना लागू करने को लेकर व्यापक तैयारी की है। योजना के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति का गठन किया गया है। संचालन समिति में ग्रामीण विकास विभाग समेत 17 विभागों के सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी को जिला कार्यक्रम समन्वयक और उप विकास आयुक्त टीटीसी को अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक नामित किया गया है। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्राम पंचायतें 10 लाख रुपए तक, प्रोग्राम ऑफिसर 15 लाख, डीडीसी 1 करोड़ और जिलाधिकारी 30 करोड़ रुपए तक की योजनाएं स्वीकृत कर सकेंगे। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 183.50 रुपये की कमी की है। भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अनुसार नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस कटौती के बाद पटना में अब 19 किलोग्राम का व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर 3,241 रुपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और अन्य खानपान व्यापारियों को लाभ होगा। पासपोर्ट आवेदन शुल्क में आज से वृद्धि लागू हो गई है। यह वृद्धि नवीनतम पासपोर्ट संशोधन अधिनियम 2026 के तहत की गई है। इसके तहत 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या फिर से पासपोर्ट बनवाने की लागत अब 2,500 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या तो

0: कालाजारी पासपोर्ट की लागत अब 3,500 रूपये निर्धारित की गयी है, जबकि तत्काल योजना के तहत यह 6,000 रूपये होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रीता वर्मा को गृह रक्षा वाहिनी का महानिदेशक बनाया गया है। पंकज कुमार दारात को पुलिस भवन निर्माण निगम में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार को विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों का आज शपथ ग्रहण होगा। विधान परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सभापति अवधेश नारायण सिंह सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। कुल 10 सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। यह विषय उन डॉक्टरों के मानसिक भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालता है जो अपना जीवन दूसरों की देखभाल के लिए समर्पित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। भागलपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में भारी बारिश दर्ज की गई। गोपालगंज के भोरे में सबसे अधिक 92.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज बांका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार और समस्तीपुर जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं अररिया, दरभंगा, किशनगंज, शिवहर और वैशाली समेत 12 जिलों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इधर राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। विकसित भारत रोजगार ग्रामीण एक्ट आज से लागू हो गया है। वजारत देही तरक्यात ने कहा कि वीबीजी रामजी एक्ट के तहत हर एक माली साल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी होगी। हमारे नामानिगार ने बताया कि रवा माली साल में इस मंसूबे के अमल दरामद के लिए 95,692 करोड़ रुपए का नज़्म किया गया है। रियासती हुकूमत ने जी राम जी मंसूबा नाफिज करने के सिलसिले में वसी तैयारी की है। मंसूबे के नफाज के लिए चीफ सेक्रेटरी की सदारत में रियासती कंडक्ट कमेटी की तश्कील की गई है। इस कमेटी में देही तरक्यात महकमा समेत 17 महकमों के सेक्रेटरीज को मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। इसके साथ ही ज़िला मजिस्ट्रेट को ज़िला प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और डीडीसी को एडिशनल ज़िला प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर नामजद किया गया है। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्राम पंचायतें 10 लाख रुपए तक, प्रोग्राम अफसर 15 लाख, डीडीसी 1 करोड़ रुपए तक के मंसूबे मंजूर कर सकेंगे। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 183

0: रुपये 50 पैसे की कमी की है। वॉयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया के मुताबिक नई कीमतें आज से नाफिज हो गई हैं। इस कटौती के बाद पटना में अब 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 3,241 रुपये में मिलेगा। इस फैसले से रेस्तरां, ढाबा, होटल और दीगर कुकिंग ताजिरों को फ़ायदा होगा। पासपोर्ट दरख्वास्त की फ़ीस में आज से इजाफा हो गया है। ये इजाफा नए पासपोर्ट तरमीमी जाब्ता 2026 के तहत किया गया है। इसके तहत नए बदलाव 36 सफ़ात वाले नए पासपोर्ट या फिर से पासपोर्ट बनवाने की लागत अब 2,500 रुपये होगी। 60 सफ़ात वाले तमाम पासपोर्ट या दोबारा जारी पासपोर्ट की फ़ीस अब 3,500 रुपये तय की गई है, जबकि फौरी मनसूबे के तहत ये 6,000 रुपये होगी। रियासती हुकूमत ने इंडियन पुलिस सर्विस के 12 अफसरान का तबादला कर दिया है। महकमा दाखिला ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रीता वर्मा को होम गार्ड्स का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। पंकज कुमार दरात को पुलिस भवन तामीरात निगम में मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुधांशु कुमार को स्पेशल निगरानी इकाई का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। कानून साज काउंसिल के 9 मुंतखब अराकीन की आज हल्फ बरदारी होगी। काउंसिल के ऑडिटोरियम में मुनक्किद प्रोग्राम में चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह अराकीन को हल्फ दिलाएंगे। कुल 10 अराकीन की हल्फ बरदारी होगी। आज नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन आम लोगों की सेहत के तहफ्फुज़ के तहत डॉक्टरों के जज्बा को जाहिर करता है। ये दिन हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती की याद में मनाया जाता है। इस साल का थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। ये थीम उन डॉक्टरों की जहनी, जज्बाती और जिस्मानी सेहत की अहमियत पर रोशनी डालता है जो अपनी ज़िंदगी दूसरों की देखभाल के लिए वक्फ करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा, वज़ीर आला सम्राट चौधरी और असेंबली स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस मौके पर सभी डॉक्टर्स को मुबारकबाद दी है। रियासत के ज्यादातर हिस्सों में मानसून सरगर्म हो गया है। महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत के बेशतर हिस्सों में हल्की से मामूली दर्जे की बारिश हुई है। भागलपुर, गोपालगंज, मशरकी चंपारण, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर ज़िले में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। गोपालगंज के भोरे में सबसे ज़्यादा 92.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि आज बांका, बेगूसराय, भागलपुर और समस्तीपुर ज़िले में तेज़ हवा के साथ भारी बारिश का इम्कान है। इधर राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के कुल 3,522 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL अप्रेंटिस के कुल 550 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bfsissc.com से प्राप्त किया जा सकता है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 1500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.sbi.bank.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारत

0: ये डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीवी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
3: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सिंह

0: पीठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
1: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
3: India's engagement.
4: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयां और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध कराता रहा है।
3: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। कि योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर

0: में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोताओं का।

0: दुल्हन एक रात की फिल्म का गीत था लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, राजा मेहदी अली खान का लिखा।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
4: लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी, ओ बावरी ओ सांवरी, अरे ओ चंचल पल छिन, रुक जा रुक जा रुक जा।

चित्रगुप्त की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज में एक राज फिल्म से। और श्रोताओ, इस गीत के पहले हमने आपको सुनवाया था दुल्हन एक रात की फिल्म का नगमा। उस गीत में संगीत था मदन मोहन जी का। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

प्रेम धवन का लिखा गीत आपने सुना, रवि का संगीत था, आशा भोसले की आवाज, फिल्म एक फूल दो माली से ये नगमा आप सुन रहे थे। ये गीत है जब जब फूल खिले फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज है श्रोताओ, और यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
2: और मेरा भी यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी आप सभी सखियों को, सभी सखाओं को, सभी श्रोताओं को और साथ में मंदाकिनी जी को
1: जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मौसम बदला है ना, सच में इसने बिल्कुल पूरा माहौल बदल दिया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ही मौसम बदलता है तो मन का मौसम भी बदल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह तो अभी मौसम नहीं बदला है, वहाँ उनका मन का मौसम तो वैसा ही है।
2: बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से वहाँ का भी
1: मौसम बदल जाए। लेकिन हाँ, मुंबई का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बरसात हो रही है।

0: है और
1: जी
0: मन भी कुछ भीगा भीगा सा है ना।
1: जी हाँ बिल्कुल,
0: हाँ,
1: और
0: और
1: बहुत अच्छा
0: भीगने का
1: लगता है।
0: अपना एक आनंद अलग ही है आरती।
1: जी बिल्कुल,
0: कभी याद आते हैं वो दिन जब तुम बचपन में भीगा करती थी या कॉलेज के दिनों में जब जाती थी और रास्ते में भीग कर
1: जी
0: आती थी? मुझे
1: अरे
0: तो याद है।
1: बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है ना कि हम जानबूझ के भीगते हैं, फिरते
0: हाँ
1: ना
0: हाँ
1: अगर ऐसा जरूरत हो तो भी
0: हाँ
1: निकलेंगे। वैसे भी थोड़ा सा भीगना बनता भी है, जब बारिश का मौसम आता है तो थोड़े समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो
0: उसका
1: देखिए
0: एक अलग ही मजा है ना।
1: बिल्कुल
0: बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे, जैसे आजकल कह देते अरे बेटा मत भीगो,
1: जी
0: जुकाम हो
1: हाँ
0: जाएगा, बुखार हो जाएगा,
1: जी
0: खांसी हो
1: जी जी
0: जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और इतनी
1: जी
0: इम्यूनिटी मजबूत हुआ करती थी कि मुझे याद नहीं कि कभी बीमार पड़े हों बारिश में भीग के। हाँ कभी कभार ऐसा
1: जी
0: हो गया होगा कि सर्दी लग गई है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन बड़ा मजा आता था स्कूल कॉलेज के दिनों में भी जब भीग कर
1: जी
0: साइकिल चलाते हुए आते थे,
1: जी
0: वो दिन बहुत याद आते हैं।
1: बहुत, सच में बारिश जो होती है ना एकदम सब कुछ बदल देती है, सब कुछ हरियाली सब जगह छा जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पूरा आप देखें जंगल हो या कहीं भी छोटा सा भी पेड़ होगा ना, वो भी एकदम खिल उठता है जब बारिश की बूंदे पड़ती हैं उसके
0: बिल्कुल
1: ऊपर।
0: सही कहा आपने। और ऐसे ही जब मन पर कुछ बूंदें ऐसी गिरती हैं तो मन
1: जी
0: भी खिल उठता है। संगीत की
1: बिल्कुल
0: कुछ बूंदें जब गिरती हैं तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन हाँ, उससे
1: जी
0: पहले हमें ये भी बताना है कि आज हम अपनी सखियों और सखाओं के लिए
1: जी
0: क्या-क्या लेकर आए
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले हम बात बता दें आपको, हम साड़ियों का जो संसार, जो बहुत जिसके बारे में महिलाएं सोचती हैं कि हम कौन सी नई साड़ी खरीद लें, हर महीने खरीद लें या हम थोड़ी थोड़ी बचत करते रहें और खरीदें, तो उन साड़ियों के संसार के अंतर्गत हम लेकर आए हैं टसर या घिचा सिल्क साड़ी, जो कि झारखंड की पहचान है।
0: अरे वाह,
1: जी
0: झारखंड की साड़ी पहनेंगे आज हम।
1: जी बिल्कुल, और अब हम बात कर लेते हैं, आज हम लेकर आए शब्द हमारा विचार आपके, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रतियोगिता पर।
0: आहा,
1: जी
0: क्या बात है जो आपके और मेरे बीच भी चलती है।
1: बिल्कुल लेकिन
0: प्रतिस्पर्धा
1: हमारे बीच स्वस्थ जो होती है ना वो प्रति
0: चलती है
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। हमारे सखियों और सखाओं से हम कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता का आपको अर्थ नहीं लिखना है, कि जैसे हम एक
1: जी
0: निबंध लिख देते हैं है ना, निबंध नहीं
1: जी
0: लिखना है कि प्रतियोगिता क्या है। आपको ये बताना है कि आपके जीवन में इस शब्द पर क्या विचार है। आपने
1: हाँ
0: कभी जीवन में कोई प्रतियोगिता जीती?
1: जी
0: आपने जो पढ़ाई से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें आपने अटेंड किया, उसको अटेंड को अटेंड किया,
1: जी,
0: या
1: या
0: आप किसी
1: फिर
0: से प्रतियोगिता रखते हैं,
1: जी हाँ,
0: प्रतिस्पर्धा रखते हैं?
1: प्रतिस्पर्धा में आप कहाँ तक चले गए, कितनी दूर तक चले गए, यानी कि आपने मन से आप कितनी दूर तक चले गए, कि मतलब एक होती है ना कि स्वस्थ प्रतियोगिता, यानी कि कोई बात नहीं चलो उसने आगे किया अब हम भी अच्छा करेंगे, एक होती है कि उसने कैसे किया
0: मैं करके
1: उसको पीछे
0: बता।
1: खींचे, तो वो आप
0: हाँ
1: बताइए कि मतलब कौन सी आप
0: मतलब
1: प्रतियोगिता के बारे में।
0: आपके कहने का मतलब ये है आरती कि कई बार क्या है, कुछ लोग जो है प्रतियोगिता के चक्कर में किसी की टांग खिंचाई कर देते हैं और आगे
1: जी
0: बढ़ जाते
1: जी
0: हैं,
1: हाँ
0: है ना। और ये जो ईर्ष्या और जलन हमारे अंदर होती है ना किसी को बढ़ता हुआ देख करके, उसकी शर्ट मेरी सफेद, मेरी शर्ट से सफेद क्यों
1: जी
0: वाली जो जलन है वो हमें थोड़ा परेशान भी कर देती
1: बिल्कुल,
0: है।
1: और पीछे भी खींचती है
0: हाँ पीछे भी खींचती है। आप एक ना एक दिन फिर पीछे हो जाते हो। आप उस
1: जी
0: दौड़ में खरगोश और कछुए वाली कहानी हमने
1: बिल्कुल
0: देखी है ना, तो इसलिए आप प्रतियोगिता तो करें लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता
1: बिल्कुल
0: रखें। तो बताइए आपके जीवन से जुड़े
1: जी,
0: कुछ ऐसे
1: आप अपना
0: किस्से।
1: नजरिया हमें बताइए,
0: हाँ
1: और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक चिकित्सक के ऊपर।
0: अच्छा
1: देखिए चिकित्सक के पास हम सभी जाते हैं, लेकिन हमारा एक फेवरेट डॉक्टर होता है जो घर का डॉक्टर कहते हैं ना, कि ये हमारे
0: फैमिली
1: फैमिली
0: डॉक्टर
1: डॉक्टर
0: है।
1: हैं, कि कुछ भी हो सर्दी जुकाम या कुछ बड़ी बात कुछ भी हो सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: उनकी राय मांगते हैं,
0: हाँ
1: फिर वो जब हम कहते हैं कि नहीं आप इसको आप बड़े डॉक्टर को दिखाइए या इसके लिए आप और टेस्ट वगैरह कराइए, तो फिर अब जब हम और दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं जिस पे सबसे पहले हम विश्वास करते हैं तो वो पारिवारिक डॉक्टर, उसके
0: जी
1: बारे में हम बात करेंगे।
0: बताइए आपके पारिवारिक डॉक्टर कौन है, कैसे हैं, और आपका जीवन में, आपके जीवन में उनका क्या स्थान है?
1: बिल्कुल
0: कब क्या ऐसा घटा कि पारिवारिक चिकित्सक आए और आपकी, उन्होंने मुसीबत को हल किया,
1: जी
0: है
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: आप
0: तो
1: बताइए
0: इन
1: क्या
0: सभी
1: है।
0: पर हम विचार करेंगे, एक गीत सुन ले। और
1: देखो
0: अरे
1: ये आप बस मेरे साथ ना ऐसा मत करा करिए ऐसा,
0: व्यंजन लेके आई हैं
1: जी
0: आज तो आप।
1: बिल्कुल, मैं व्यंजन इतना अच्छा लेकर आई हूँ, और हमारे जो श्रोता हैं वो भी सब सखियां सखा सब लिख रहे हैं पकौड़ों के बारे में, सोचिए कितना,
0: आहा
1: कहाँ बारिश का मौसम आते ही पकौड़ों की तो मतलब ऐसा लगता है कि बारिश के साथ में जो एक मिट्टी की सुगंध होती है ना, उसके साथ पकौड़ों की
0: गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए। बिल्कुल सही कहा
1: जी।
0: तो बताइएगा आप अपने घर में इस वक्त या बारिश के मौसम में किस तरह से पकौड़े बनाते हैं। कई तरह के पकौड़े।

0: कौन से पकौड़े
1: कौन
0: बनाते
1: कौन सी,
0: हैं,
1: बेसन के और बहुत
0: ताकि
1: से
0: हम
1: तरह
0: उसको
1: के
0: एकदम उसको सोच
1: खा
0: के
1: ले
0: कल्पना करके उसको हम खा ले।
1: नहीं भी हमारे लिए भेजेंगे, हमारे सिक्योर से का, और हम उसे खा भी लेंगे, ठीक है,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि मुंबई का जो मौसम है वो पकौड़ों का ही मौसम हो
0: जी
1: रहा है,
0: बिल्कुल। तो
1: ठीक है,
0: एक गीत सुन लेते पहले।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो मन तो भीग गया है, रिमझिम गिरे सावन।
1: जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात कि मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं, पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे इसलिए बीमार हो गए, है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है,
1: डॉक्टर,
0: हमारा डॉक्टर जो हमारा पारिवारिक डॉक्टर है,
1: जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं,
0: हाँ।
1: और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते, बहुत दूर नहीं जा सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं,
0: जाते ही उन्हें फोन पर बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके,
1: अक्सर ऐसा होता है कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं क्योंकि वो हमें जानते हैं, मतलब पहचान होती है तो आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है ना
1: जी बिल्कुल।
0: आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है,
1: बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज बुखार है, इस तरीके की चीजें, तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ

0: चीज़ें होती हैं तो हम फ़ोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हाल चाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें वो बता देते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं तो हमें फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है ये बहुत समय से चल रही है, तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए जो आप इस जो इस चीज़ का विशेषज्ञ है, तो आप वो उसको दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं
1: हाँ,
0: आपको।
1: क्योंकि उनके पता उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा
0: जी
1: पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और
0: जी
1: पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम
0: जी
1: बताइएगा
0: जी
1: और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए। ऐसी
0: बिल्कुल
1: स्थिति भी होती है कई बार।
0: जी
1: तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था। घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए, और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी
0: जी
1: समस्याएं हो जाती थी, तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते थे,
0: बिल्कुल
1: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी कर देते। अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे,
0: जी
1: सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है।
0: जी ये एक एक जो चीज़ होती है ना, जो आप हम मानसिक जो जो आधार दे देते हैं ना, तो वो बहुत फायदेमंद भी होता है ना,
1: हाँ
0: कि आधी जो बीमारी होती है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्यों नहीं बुखार उतर रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हमें वो बताता है कि नहीं नहीं आप इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप ये दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो लगता है कि हाँ चलो हमें डॉक्टर को दिखा दिया, अब हम ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और जो पारिवारिक चिकित्सक हैं वो केवल वही की बीमारी का इलाज नहीं करते, बल्कि हमें मार्गदर्शक के रूप में भी वो होते हैं हमारे। और बच्चों के टीकाकरण से लेकर अगर बुजुर्गों की देखभाल तक देखा जाए, परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य पर वो नजर रखते हैं। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रोगी को केवल एक केस के रूप में नहीं देखते,
0: जी
1: बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में समझते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: क्योंकि बहुत समय से इलाज हम करा रहे होते हैं तभी वो हमारे फैमिली डॉक्टर बनते हैं, तो वो जो डॉक्टर होते हैं तो वो अच्छे से समझ के करते हैं कि हाँ वो जानते हैं इतिहास हमारा, कि हम क्या परेशानी हमें रही है, क्यों रही है, कोई एलर्जी तो नहीं है, तो वो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, जो पारिवारिक डॉक्टर है, वो इस चीज़ को अच्छे से समझता है, तो वो जो हम कहीं बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं, तो वो भी बताता है कि आप ये चीज़ें उनको पहले बता दीजिएगा, जिससे कि उस हिसाब से वो आपको दवा दे सकेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और जैसे आरती, आजकल जो है मधुमेह की बीमारी है, या उच्च रक्तचाप हो गया है, तनाव है, हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही हैं, तो
0: जी
1: ऐसे में पारिवारिक जो चिकित्सक है हमारा, वो समय समय पर सलाह देकर इन बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोक भी देता है
0: जी
1: कि भाई
0: हाँ
1: आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये
0: जी
1: अपनी दिनचर्या रखनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से खाना खाना है,
0: जी
1: इस तरह की
0: और
1: चीजें
0: जी
1: नहीं खानी है।
0: बिल्कुल, और वो डॉक्टर जो है वो हमारी दिनचर्या पर नजर भी रखते हैं, कि ऐसा तो नहीं आपने कुछ लापरवाही करी हो, या आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसे खा लिया है, तो वो पूरा ध्यान भी रखते हैं, तो उनको पता होता है कि इनको हमें अभी हम इसको इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते, अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वो हमें दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और आज भी क्या है, हमें बहुत जरूरत है एक ऐसे डॉक्टर की जो हमें समझ सके, है ना,
0: जी
1: हमारे परिवार के सदस्यों को समझ सके। और विश्वास का जो रिश्ता होता है डॉक्टर और मरीज के बीच, सबसे बड़ी
0: जी
1: बात क्या होती है आरती, की हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो बीमारी है उसमें ये चीजें नहीं खाना है। कई बार मैं कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ, तो वो कहते हैं कि मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो खाने का कंट्रोल करेगा।
0: जी हाँ
1: आपने
0: अक्सर
1: अगर
0: होता है।
1: खाने पर कंट्रोल नहीं करना सीखा है तो फिर डॉक्टर भी लाचार हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: जैसे बीपी की समस्या है तो कहते हैं नमक कम खाइए, अब आप क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नमक के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं
0: जी
1: तो नमक ऊपर से और लेती हूँ,
0: जी
1: तो फिर डॉक्टर सोचिए क्या कहेंगे, वो
0: बिल्कुल
1: कैसे आपको ठीक करेंगे। और फिर जब
0: बिल्कुल
1: आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका कहा भी कैसे मानेंगे।
0: बिल्कुल, और जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमें थोड़ा डांट डपट भी देते हैं कि नहीं आपको ऐसा करना ही है, और वो समझ जाते हैं कि हमने कोई लापरवाही की है इस बात के बारे में भी, अगर हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते या कोई लापरवाही करते हैं, तो फिर जाते हैं उनके पास, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं आपने ये लापरवाही ज़रूर की होगी, या आपको तला हुआ मना किया है तो आपने इसे खाया होगा तभी आपको ये परेशानी हुई है, तो क्योंकि वो हमारे बीमारी का इतिहास जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो वो अच्छे से हमारा इलाज भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए उनका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। छोटी
0: जी
1: छोटी चीजों का जो स्वाद जीभ को लग गया है ना, उस पर हमें कंट्रोल
0: बिल्कुल
1: रखना
0: कंट्रोल
1: चाहिए।
0: करना
1: जैसे अब
0: चाहिए
1: आप तुम आज पकोड़े खिलाएंगे ना
0: जी
1: हमारे श्रोता तो मैं थोड़ा
0: जी
1: कम खाऊंगी।
0: बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा नहीं है कि आप रोज पकौड़े बनाने बैठ जाएं या रोज इस तरीके की तली हुई चीजें खाएं, कभी कभी चलती हैं ये सब चीजें, लेकिन हर समय नहीं
1: बिल्कुल,
0: अच्छा होता, वो
1: आपको सीधा
0: नुकसान
1: साधा
0: करता है।
1: खाना मौसम के
0: बिल्कुल
1: अनुरूप खाना चाहिए। और
0: बिल्कुल
1: सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ खाना, ताजा पका हुआ
0: बिल्कुल,
1: भोजन
0: क्योंकि
1: खाइए।
0: ये जो मौसम रहता है ना, इसमें थोड़ा बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं,

0: इसलिए बेहतर होगा कि हम ताज़ा खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं, और बेहतर होगा कि हम तला हुआ ना खाएं, सादा जो भोजन होते हैं वही सादा भोजन
1: खाएं। फल फ्रूट खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड खाने की कोशिश करें, अंकुरित अनाज खाएं, तो थोड़ा सा हमारा जो है स्वास्थ्य है अच्छा रह सकता है।
0: थोड़ा सा उसको रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं,
1: बहुत तरीके हैं खाने के,
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: तो हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है ना आरती, वो भी खुश रहते हैं, वो नहीं चाहते कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं वहाँ के परिवार के सदस्य बीमार रहें या उनके पास इलाज के लिए आए। उनकी सफलता भी तभी होती है जब उस परिवार के सदस्य सब सही रहें, स्वस्थ रहें।
0: तो हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक यानी फैमिली डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार में सब स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं। उन्होंने हम सबको बिना जरूरी दवाइयों से बचाया है। उनका निदान सटीक रहता है। अगर रोग 5 दिन में काबू में नहीं आए तो वो उचित मार्गदर्शन देते हुए किसी सीनियर के पास भी भेज देते हैं। तो ये कहते हैं ये
1: बिल्कुल। और भी किसी ने कुछ लिखा
0: बिल्कुल,
1: है?
0: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि फैमिली डॉक्टर अब ये इसकी बारे में बात करें तो ना के बराबर ही रही है। अब नाखून से लेके सर के बाल तक हर अवयव का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे, और जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है अब कि वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत जरूरी है।
1: जी, एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है। और ये भगवान जैसे होते हैं पारिवारिक चिकित्सक हमें हमारे लिए भगवान समान है। और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र, लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं।
0: एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।
1: और देखिए हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो हैं डॉक्टर हैं। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कंप्लीट हो गया है और छोटा बेटा MBBS थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए।
0: बहुत अच्छी बात है। तो और एक मशहूरता है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं। अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भलीभांति परिचित होते हैं। इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।

0: क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है, हमारे जीवन में उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है, पारिवारिक चिकित्सक। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना
1: जी
0: अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो हम उन डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें मतलब हमारा चेकअप करने आ जाते हैं।
1: जी
0: इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते
1: जी
0: हैं।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे लिए अपने हो गए। इसीलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज़्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
0: बिल्कुल सही कहा। और चलिए, अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम
1: बिल्कुल
0: करता
1: जी, तो
0: है।
1: एक गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता हैं जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है, और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अब ये आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी, और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं, और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल
0: जी।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती
1: जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं।
0: इतने सुंदर संसार में महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है।
0: उनके लिए सिर दर्द है।
1: जी बिल्कुल जी। आज हम आज लेकर आए हैं टसर यानी कि तुसार भी कहते हैं जिसे, घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है उसे।
0: बिल्कुल।
1: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है वो घीचा रेशम के कोकून का बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो रेशम की जो होती है ना उससे थोड़ा अलग होता है ये कोकून से बना होता है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो रेशम होती है।
0: तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती है। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहने पहनती है, जब हमें अच्छा लगता है हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती है, अरे भाई कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुसार रेशम जिसे जंगली रेशम या वन रेशम या तसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये।

0: जी, और जो जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं। फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्रयुक्त होता है, जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है। मतलब आप गर्मी
1: हाँ,
0: में आराम से पहन सकते हैं इसको।
1: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो
0: जी
1: उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा,
0: जी
1: जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है, रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
0: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की ज़रूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
1: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है।
0: जी
1: रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं। और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक है, इसको जलाकर देखा जाता है।
0: बिल्कुल। और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है
1: अच्छा,
0: जी, और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है, जिससे वो सूखकर काली राख में बदल जाती है। इसकी इस प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें वो सुनहरी चमक होती है, जो बहुत सुंदर दिखती है और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
1: और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं। और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको,
0: जी
1: और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं।
0: जो साड़ी
1: हाँ,
0: इतना ज्यादा पहनता है वो समझता है इस चीज
1: समझता है
0: को।
1: कि कैसे इसको रखना है। और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके
0: बिल्कुल
1: धब्बे जो है
0: हाँ
1: स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल। और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: हाथ से और मेहनत से बनती
1: बनाई
0: है।
1: जाती है। और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है। और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता, बल्कि
0: जी
1: अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है ये।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी होती हैं साड़ियां। एक
1: हाँ,
0: गीत सुन लेते हैं ना।
1: गीत तो सुन लेते हैं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम
0: क्या
1: शॉपिंग करने जाओगी ना, तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक
0: मुझे मालूम था ये आप कहने वाली हैं। जी
1: है।
0: बिल्कुल
1: चलिए सुनते हैं ये
0: जी।
1: गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने।
1: जी, अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं ना।
0: करी
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, मैं जो श्रोता लिख रहे हैं,
0: हाँ
1: जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारे सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि वो क्या
0: हाँ
1: लिख रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है, बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, वो ज्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और देखा जाए तो प्रतियोगिता जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
0: बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कंपटीशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना, जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
0: हाँ,
1: ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
0: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते

0: हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते ही रहते हैं।
1: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
0: बिल्कुल। और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है
0: बिल्कुल,
1: इसको, है ना।
0: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्म विकास है, हम वो कर सकें, ना कि हम उसमें लग के अपने अपने को नुकसान पहुंचाएं
1: अपने
0: या
1: जीवन को हम
0: बिल्कुल
1: बर्बाद कर
0: या
1: रहे हैं, अपने
0: दूसरे के
1: जीवन
0: जीवन
1: को
0: को
1: खत्म कर लेते
0: बिल्कुल।
1: हैं कई बच्चे, और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं।
0: बिल्कुल
1: अगर आपने अपने जीवन को गंवा कर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता
0: बिल्कुल
1: के, जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं।
0: बिल्कुल
1: पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए। और या हम नौकरी करते हैं या
0: बिल्कुल
1: घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं या पड़ोसी एक दूसरे
0: बिल्कुल।
1: से
0: और कभी कभी
1: प्रतिस्पर्धा रख
0: ऐसा
1: लेते
0: होता
1: हैं।
0: है मंदाकिनी जी, कि प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं, उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं। क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं, कि फिर हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं।
1: निकल जाएं। ये
0: तो
1: जो हमारे
0: बिल्कुल
1: अंदर भावना होती है ना, असुरक्षा की भावना कहते हैं।
0: जी
1: और आरती, सबसे बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं। कई बार
0: बिल्कुल
1: हारने में भी बहुत मजा होता है।
0: बिल्कुल।
1: आप हार कर भी जीत जाते हैं कई
0: किसी
1: बार।
0: आप कभी किसी के चेहरे पे एक खुशी दे सके, तो
1: हाँ,
0: सबसे बड़ी बात ये होती है, उसके
1: प्रतियोगिता में
0: चेहरे की
1: हिस्सा
0: हंसी
1: ले,
0: देख के ही
1: हाँ,
0: आपको लगेगा कि नहीं,
1: मजा आता है।
0: हमने
1: अब बच्चों
0: अच्छा
1: से
0: किया।
1: हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता, तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है,
0: बिल्कुल
1: तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है।
0: जी
1: और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और
0: जी
1: हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से
0: बिल्कुल।
1: हिस्सा लेना है, वो कोई भी
0: बस अपने आप
1: प्रतियोगिता
0: को
1: हो।
0: मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं, वहां से हारते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो उसको
1: बिल्कुल।
0: मजबूत रखिए
1: और
0: बस।
1: मन के हारे हारे, मन के जीते जीत।
0: जी
1: अगर आप हार कर भी, आपका मन नहीं हारा है, फिर
0: जी
1: भी आप जीत जाते हैं। बहुत
0: बिल्कुल
1: बार ऐसा होता है, हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, और वो हार जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन
0: बिल्कुल।
1: होता है वो हमें,
0: वो मनोबल जो होता है ना, वो
1: हाँ
0: मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
1: बिल्कुल। इसलिए
0: जी
1: प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में, जो जरूरी भी है, तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें। किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे
0: आगे
1: लेकर
0: जी
1: जाएं।
0: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंदाकिनी जी है।
1: हाँ
0: अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले ही प्यार था, अभी भी प्यार है,
1: और
0: वो
1: आगे
0: है,
1: भी रहेगा
0: हाँ जी हाँ आगे भी रहेगा, वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन।
1: व्यंजन।
0: और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या लेकर आए हैं, हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे श्रोता लेकर आए हैं
1: बना कर लेकर आए
0: पकौड़े।
1: हमारे लिए।
0: बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने, तो बात करते हैं। पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: जो हमारे जो जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खौलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खौलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या बात
1: बहुत
0: करिए
1: शानदार,
0: सच में,
1: बहुत शानदार,
0: क्या
1: बहुत
0: मतलब
1: शानदार।
0: ऐसे तो मतलब सोच नहीं सकते,
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत
1: इन्होंने
0: बढ़िया बात
1: देखिए
0: कही है।
1: कितना इसको काव्यात्मक तरीके से,
0: हाँ
1: क्लासिक तरीके से पेश किया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा
0: जी
1: लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से,
0: सच में
1: है ना,
0: सच
1: अपने विचार प्रकट करें, तो कार्यक्रम का मजा मजा जो है मजा दोगुना हो जाता
0: में,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है, और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां 3-4 तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, 1-2 कटे हुए, आलू, पालक, बेसन लीजिए, और चावल का आटा ले लीजिए 2 बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए, मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है, और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है, और नमक आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए। और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें, एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज, आलू और पालक ले लें, इसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाए, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें, और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाए बिना पानी डाले, और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर, और इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर पकौड़े डाल दें, कुरकुरा होने तक इसको पकाएं मध्यम आंच पर, दोनों तरफ से इसको हिला के पकाते रहें, अंत में कुछ सेकंड के लिए आंच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त

0: तेल ना सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात
1: वाह।
0: बताइए। अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में
1: हाँ
0: साथ में ना, और गरम गरम पकौड़ों हरे धनिए की चटनी के साथ खाइए आरती जी।
1: मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि आप
0: हाँ,
1: जैसे
0: मैंने देख
1: पकौड़े वो
0: लिया
1: छन
0: था,
1: के निकल
0: तुम
1: ही रहे
0: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना। हाँ
1: एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी

0: हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल
0: और एक
1: सही कहा
0: जी
1: इन्होंने।
0: बिल्कुल।
1: हाँ
0: और हमारे जो एक है हमारी जो श्रोता है वो लिखती है कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
1: बाप क्या बात है। देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया इनके, है ना।
0: मैंने कहा ना बारिश
1: और
0: होते
1: कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है, गुजराती पकौड़े के शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है, और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है। तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिया का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी, टोमेटो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है। और ये मौसम का साथी है। भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो, तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना आरती, बहुत स्वादिष्ट लगती है।
0: जी
1: और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर, मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी है, या फिर
0: जी
1: कॉर्न स्टार्च भी ले
0: हाँ
1: सकते
0: हाँ
1: हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा घोल को तैयार करें, एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज, आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं। ध्यान रहे कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आंच गर्म रखें, तेल गर्म होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें। पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए, और छमा छम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
0: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा उन्होंने दाल के पकौड़े का बताया है रेसिपी। तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें, अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन, मिर्च, अदरक भी पीस लीजिए। पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें, धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कढ़ाही में सरसों का तेल गर्म करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें। और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है, सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं। और किसी भी दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल, जो 2 चम्मच रहता है चावल, वो जरूर डालें आप।
1: तो अब पकौड़े बहुत खा लिए, गीतों का आनंद
0: गीत
1: भी
0: सुन लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा
1: जी।
0: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माताजी अध्यापिका थीं और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहाँ से मैंने बीए किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहाँ मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
2: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा

0: हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
1: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था, और कुछ तुकबंदियाँ, कुछ कविताएँ, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीज़ें लिखने लगा था। वो किशोर मन के अभिव्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा, और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
0: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है, या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
1: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो, मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
0: जी,
1: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, तीन भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं चार छह भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूं ठीक से, उनको बोलता भी हूं। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं, और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
0: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
1: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
0: अच्छा।
1: धर्मयुग, कादंबिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहां पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए, और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी, और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी, और वो पढ़ाई लिखाई का युग था। तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैं लिख सकता हूँ, मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ, और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
0: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
1: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय, और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है, और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है, और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
0: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं?
1: जी।
0: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी। मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में, जैसे हंस
0: जी,
1: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृत मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए, और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं, ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां, जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं, नकारात्मकता को दूर करके।
0: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिए ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं, और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती है। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
1: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय, जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी, जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
0: उसका आकाश,
1: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है, और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था। उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था, और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी।
0: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
1: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया, लेकिन कहानियां मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था।
0: जी,
1: हास्य भी मेरे अंदर था, और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर तीन भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है, और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो

0: रूप से मैं व्यंग लिखने लगा, और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई,
1: जी
0: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, और व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं, और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है।
1: जी तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राणी जी, लेकिन व्यंग्य लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
0: जी, एक घटना हुई थी राजनीतिक। उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी, और दो तीन राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली, और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। कहीं
1: जी
0: न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं, उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा, और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था, और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया।
1: जी यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
0: जी
1: मिला।
0: जी
1: तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे,
1: क्या बात,
0: बड़ा सकारात्मक गीत है,
1: क्या
0: मुझे
1: बात,
0: बहुत अच्छा लगता
1: बहुत
0: है।
1: सुंदर क्लासिक गीत है ये।
0: जी
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।

0: हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता
1: जी,
0: और गिद्धों का स्वर्णकाल,
1: जी,
0: अंधे पीसे
1: जी,
0: और साहित्य के शनिदेव,
1: जी,
0: ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग्य लेखन सन 1998 से शुरू कर दिया था और मैं व्यंग में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग के पितामह हैं वो, और उनके रचनावली के 6 खंड हैं वो, मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज़्यादातर वो व्यंग मेरे पहले व्यंग संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित हैं। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग है जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है, जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है।
0: जी,
1: ये सीधी सी बात होती है अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो। जब वह नए कुत्ते पर भौंकता है तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और यह बात कि आप कहीं न कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है, वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है, यह व्यंग जो मेरा है उसी को दिखाता है। इस व्यंग को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी,
1: उसके बाद दूसरा व्यंग संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझें, क्योंकि व्यंग जो होता है वह अविधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना,
0: जी,
1: जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का,
0: जी,
1: जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे। तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्णकाल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने हैं उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है।
0: जी, जी।
1: तीसरा जो है वो अंधे पीछे हैं, ये हमारी व्यवस्था में, मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है। पूरा मुहावरा है कि अंधे पीछे कुत्ते खाएं। अंधे पीछे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाया जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं, जो कि कुत्ता जी ने समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया, हम आ गए मोबाइल युग में जिसमें लोगों पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई 3 पेज 4 पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने, पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कालम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गईं, तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800, 1000, 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य के शनिदेव मेरा चौथा व्यंग संग्रह है जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा। बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं, और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का संदर्भ। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है। उसमें और भी जो व्यंग हैं वो राजनीतिक, सामाजिक घटनाक्रमों पर हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा, व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और

0: क्या है।
1: हो रहा है।
0: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है, उस खाई को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है, और उसकी झलक आपको साहित्य के सन्निधियों में मिलेगी।
1: जी, तो व्यंग्य में अगर हम बात करें, परसाई युग से अब
0: जी
1: तक कितना
0: जी
1: बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
0: जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते
1: बिल्कुल।
0: हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में, और हम व्यंगकार दावा करते हैं हम कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है।
1: जी
0: जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है, वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर
1: जी
0: ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया।
1: जी
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है,
1: जी
0: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी हैं, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे, कितना भी लंबा आप लिखेंगे,
1: जी
0: पत्रिकाएं छापेंगी। उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया। धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे।
1: जी
0: अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई
1: जी और
0: हैं।
1: पाठक भी, वो एक बड़ा वर्ग था
0: जी
1: पाठक का
0: हाँ, बहुत बड़ा
1: जो
0: वर्ग
1: पढ़ा
0: था। हाँ
1: करता
0: बहुत, हाँ बहुत
1: था।
0: बड़ा वर्ग था पाठक का, और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कम हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं।
1: जी
0: जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
1: जी बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है
0: जी
1: और व्यंग्य विधा में हाथ आजमा रहा
0: जी
1: है। अब कितना वो व्यंग्य है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं,
0: जी
1: हम उसे भी व्यंग्य समझ लेते हैं और
0: जी
1: लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं।
0: जी
1: तो आपसे अगला सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
0: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूं,
1: जी
0: और मुझे एक गीत बहुत पसंद है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन
1: मन मेरा
0: मेरा, लिख लिया नाम इस पे
1: इसमें
0: तेरा।
1: तेरा, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। राडी साहब, व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग्य हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी।
0: जी,
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है।
0: जी,
1: जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू की राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है।
0: जी,
1: प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूं जीवन के लिए। हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
0: जी,
1: आपने मीम्स की बात की है। मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग

0: हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग्य दो चीजें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगति, इनका साज ठीक होना चाहिए।
1: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग्य हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग्य चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग्य के लेखन का भविष्य ये कैसा लगता है आपको?
0: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
1: जी,
0: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम है, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहां तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं, और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं
1: जी।
0: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है
1: जी।
0: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
1: नहीं पाया जी।
0: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं, ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं, कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका लें किसका ना लें, वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं हैं, थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। मेरा अनुमान ऐसा है,
1: क्योंकि समय कम है लोगों के पास। और आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है, तो हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते हैं, क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है। तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है। तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग की, आप व्यंग्य लेखक हैं, क्या व्यंग्य सभी पर लिखा जा सकता है, या इसमें कुछ विषय वर्जित हैं, या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
0: जी, ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहां तक कि पंचायतों की भी सत्ता है, और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है
1: जी।
0: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है, तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है, उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए
1: जी। यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है
0: जी। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आपने जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है। व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें

0: बादल पर व्यंग्य लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है, किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है,
1: मतलब वैचारिकता होनी
0: हाँ,
1: चाहिए और वैचारिक
0: हाँ,
1: बातचीत
0: उसको
1: होनी
0: आप
1: चाहिए।
0: प्रतीक मान करके लिख सकते हैं, किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए, साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश।
1: जी, जी। हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग्य लेखन पर और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है
0: जी,
1: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच।
0: जी जरूर, कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
1: क्या बात है?
0: ये मैं चाहूंगा कि आप सुनवाएं।
1: आइए सुनते।

0: आदिशंकर जी, तो आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: यह आपकी बात सही लगती मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है।
0: जी।
1: व्यंग का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग बिरादरी से बाहर है, लेकिन व्यंग मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का

0: लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है, उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिल मिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो।
1: जी, जी।
0: तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
1: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग्य केवल एक हास्य की विधा है।
0: जी।
1: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है।
0: जी।
1: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा।
0: जी, जी।
1: तो क्या पाठकों का व्यंग्य को समझने का नजरिया बदला है?
0: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूं जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं, सीधे किसी दल, किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूंगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुंचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीजें तुरंत मिलती जा रही हैं, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
1: जी, जी। एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए।
0: जी।
1: और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
0: जी, मंदाकिनी जी ने, आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा है कि कुएं का मेढक होना।
1: जी,
0: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है,
1: बिल्कुल,
0: कुएं का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है और वहाँ पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके, देख करके कर सकते हैं।
1: जी।
0: तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
1: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
0: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं, तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे, जैसे हमारे यहाँ सूरदास
1: जी,
0: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्रिय थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थे।
1: जी, जी।
0: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं।

0: उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है, प्रायः अपवाद हो सकते हैं, जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे,
1: जी जी
0: जिन्होंने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि याजावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता है, और याजावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आई और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पलवन याजावरी से होता है।
1: दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
0: निश्चित रूप
1: है ना,
0: निश्चित रूप से।
1: तो जब बात रचनात्मकता की आती है, तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है। तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
0: जी।

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
2: जी,
1: आपकी यायावरी है इसमें, एक यात्रा संस्मरण है आपका, ये इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुई।

0: पकड़ते थे, तब यात्राएं मुश्किल थीं और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुंच नहीं थी उनकी
1: जी।
0: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुंचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं फिर इस जमाने में यात्रा संस्मरण की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहां वो जिस जगह पे गया है वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के खान पान, वहां के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़ें तो आपको सूचनाएं तो मिल जाएंगी
1: जी,
0: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण में मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण को सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों को एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर की यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूं मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है। मैंने मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं, मैंने प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूं
1: जी।
0: और वहां पर जाकर के मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहां के जन समुदाय को, वहां की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं और इसके अंदर जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है, प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है
1: जी।
0: जी,
1: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा लिखा लिखा है।
0: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगी दर्शन हाँ,
1: दृष्टि और पांव।
0: दर्शन इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन भी इसमें आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है। क्या आप गए यात्रा किए, धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहां आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने एंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आ गए, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहां आपने दर्शन किया वहां का जीवन दर्शन क्या है इस चीज को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है। और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीजें हैं। आप जब यात्रा करते हुए अपनी मूल चीजों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीजों को मिलाकर के मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
0: जी जी जी जी
1: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
0: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूँ कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ, जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, वहां पर लोग लेके जाते हैं, एक मिनट दो मिनट के उनको दर्शन मिलता है, लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी में मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं। प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है, मुझे इस बात की आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास ना हो, मुझे भूल जाता है कि यहां फोटो भी खींचनी चाहिए।
1: जी,
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूं मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण डालना हो

0: है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय
1: कैमरे
0: मोबाइल
1: की
0: कैमरे
1: आंखों
0: के।
1: से। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस
0: धन्यवाद।
1: चलते चलाते एक गीत का और सुनना चाहेंगे हम।
0: जी जरूर।

ये था जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। उन्होंने बताया कि परियोजना से लगभग 75 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 98 लाख व्यक्ति दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे 4 से 6 लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कवराई खंड के को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल पूंजी लागत 7,145 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह परियोजना कानपुर और कबराई के बीच निर्बाध उच्च गति संपर्क प्रदान करेगी, साथ ही सागर, भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए आगे की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। इसके अलावा समिति केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श करेगी। समिति ने गृह मंत्री को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक अग्रिम जानकारी प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरण

रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी को 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। राज्य सरकार ने 15 जून को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। कल मैक्सिको, फ्रांस और नॉर्वे के अंतिम 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM बैंड के 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

शाम 5:30 बजे महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम प्रसारित होगा घर आंगन। इसमें बहनों से बातें होंगी वृक्ष लगाएं धरती बचाएं विषय पर, और बरसात में स्वास्थ्य संबंधी किन किन बातों पर ध्यान दें इस पर भी चर्चा होगी। संध्या 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत, और 5:05 पर हम पटना से रिले करेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

संध्या 6:10 पर ग्रामीण कार्यक्रम होगा गांव घर। गांव घर कार्यक्रम में आज चर्चा होगी देश और समाज के लिए डॉक्टरों की महत्ता विषय पर। एक बरसाती लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम में, और इसके अलावा एक वार्ता सुनवाई जाएगी। विषय होगा जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं और उनके निवारण। वार्ताकार होंगी डॉक्टर रमा मौर्य। संध्या 6:40 से आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत, और शाम 7 हम आपको सुनाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।

शाम 7:30 बजे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले के हलचल हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के पटना केंद्र से। शाम 7:50 से आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद और रात्रि 9:15 बजे समाचार संध्या।

रात्रि 9 बजे से आप सुनेंगे हमारे केंद्र से शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर सौरभ। इसमें हम आपको सुनवाएंगे शाहिद परवेज से सितार वादन, और रात्रि 9:30 पर विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार हम रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम रसरंग में हिंदी एल्बम सॉन्ग्स, और रात्रि 10:30 से कार्यक्रम होगा चित्रपट तराने। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा समाप्त होगी। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें कि आज शाम 7:50 से आप सुनेंगे ईमेल फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, यह आकाशवाणी सासाराम है। शाम के 5:10 हो रहे हैं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राजभासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आए हैं तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

0: ब्रिक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा, देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सखियों कहते हैं एक पेड़ 100 खुशियों के बराबर होता है। सच कहे तो अभी जब हम गर्मी से परेशान होकर किसी पेड़ की छाया में आते हैं तब हमें इसकी अहमियत पता चलती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पेड़ हमें सिर्फ छाया ही नहीं देते बल्कि जीवन देते हैं। इसलिए हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। सखियों आज हम सभी गर्मी से बेहाल है। हालात ये है कि घर से बाहर निकलते वक्त हम तो ठीक रहते हैं लेकिन जैसे ही जब घर में यानी कि अपने काम करके घर में आते हैं तो उस समय हमारी स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। हमारा शरीर ही नहीं बल्कि हमारा दिमाग भी पूरी तरह से गर्मी के कारण थक जाता है। ना एनर्जी बचती है ना ही हमें थोड़े देर तक कुछ सोचने समझने की शक्ति मिल पाती है। हर साल गर्मी कहे या टेम्परेचर बढ़ती जा रही है।

सबके पीछे सबसे बड़ा कारण है पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई। जी हाँ, ये पेड़ पौधे जैसे जैसे कट रहे हैं वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जा रही है और हमारी हालत ख़राब होते जा रही है। सिर्फ एक बार सोच कर देखिए कि एक अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिश कैसे होगी, हवा शुद्ध कैसे रहेगी, हमारे बच्चों को स्वच्छ वातावरण कहाँ से मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि एक पेड़ अपने जीवन काल में हजारों लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन देता है। यही पेड़ गर्मी कम करते हैं, पक्षियों को घर देते हैं और धरती का संतुलन बनाए रखते हैं। आज जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी और घटते जल स्तर जैसी समस्याएं हमारे सामने हैं। इन सब से अगर हमें निजात पाना है तो या ये कहे कि इन सब से में अगर सबसे सरल समाधान है तो वो है अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना। लेकिन केवल पौधा लगाना ही काफ़ी नहीं, उसकी देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी है। उसे समय समय पर पानी देना, पशुओं से बचाना और बड़ा होने तक उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी होगी। तो बहनों, अगर हम हर परिवार इस वर्ष केवल एक भी पौधा लगाए ना और उसकी देखभाल कर ले तो हमारे गांव, शहर और पूरा देश हरियाली से भर सकता है। तो आइए इस वन महोत्सव सप्ताह में हम सब मिलकर संकल्प ले कि एक परिवार एक पौधा नहीं, जितना संभव हो उतने पौधे लगाएंगे और उनकी देखभाल भी करेंगे। याद रखिएगा, आज लगाया गया पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे अनमोल उपहार है। तो चलिए इस उपहार को देने के लिए एक कदम हम भी बढ़ाएं और इस गीत को भी सुन लें।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनिए वैसी पंचायत से, गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: कार्य किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाएं, उसके बाद गली बनवाएं, नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाएं, उसके बाद रोड बनवाएं, उसके बाद कचरा वाला। तो बहुत अच्छा लगा, पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ भी हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: अब तक हमारी बातें हो रही थी पेड़ पौधे और गर्मी पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानसून कहीं आ चुका है तो कहीं पर बस दो चार दिनों में दस्तक दे देगा। बारिश का इंतज़ार हम सभी बेसब्री से कर रहे हैं क्योंकि बरसात का मौसम अपने साथ हरियाली और ठंडी फुहारें लेकर आता है, लेकिन साथ ही कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी हमें और हमारे परिवार को बरतने की ज़रूरत है क्योंकि यही हमें स्वस्थ रखेगा। तो अगर आप सावधानी बरत रहे हैं तो उसमें सबसे पहली बात करते हैं हम साफ पीने की पानी की। जी हाँ, पानी की शुद्धता पर जब भी संदेह हो या ऐसे भी, कोशिश करें कि हमेशा उबला हुआ या स्वच्छ पानी ही पिए, क्योंकि अगर आप उबला हुआ और स्वच्छ पानी पीते हैं तो आप बीमार कम पड़ेंगे, खासकर बच्चे और बुजुर्ग। दूसरी बात, बरसात में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, इसलिए घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें। कूलर, गमले, टायर और पानी रखने वाले बर्तन को नियमित रूप से साफ करें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें और पूरे परिवार को या अपने पूरे परिवार को या कपड़े जब भी पहनाए रात में सोते समय या पहने जब भी वो, तो शरीर को ढकने वाले ही कपड़े पहने, यानी कि खुले कपड़े ज़्यादातर ना पहने, इससे मच्छर कम काटने का डर रहता है। और अगर अब बात भोजन की करें तो भोजन के मामले में भी सावधानी बरतनी ज़रूरी है। बासी

भोजन बरसात के मौसम में हमें खाने से बचना चाहिए। वहीं कटे हुए फल या खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ से भी खाने से हमें बचना चाहिए और घर का ताज़ा और पौष्टिक भोजन ही सबसे सुरक्षित होता है। इसलिए कोशिश करें कि बाहर का नहीं घर का साफ़ सुथरा खाना ही खाएं। बरसात में हाथों की सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। खाना बनाने और खाना खाने से पहले तथा टॉयलेट के बाद यानी कि जब भी शौचालय का इस्तेमाल करें हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं और पूरे परिवार को इसकी आदत लगवाएं। और अगर किसी भी तेज बुखार लगातार उल्टी दस्त या सांस लेने में तकलीफ हो तो घरेलू इलाज पर निर्भर ना रहें। जी हाँ, अगर स्वस्थ रहना है तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से संपर्क करें। सखियों याद रखिए, स्वस्थ परिवार ही खुशहाल परिवार होता है। थोड़ी सी जागरूकता थोड़ी सी सावधानी हमें कई बीमारियों से बचा सकती है। तो इस संदेश को आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर से सुनते हैं और सुनवाते हैं अपने सखियों को प्यारा सा गीत।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं ज्योति कुमारी, ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं, यह सारी की सारी छुपी रह जाती है अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ उभार कर एक मंच प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: सखियों, आइए बात करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर्स पर। पहला हमारा करंट अफेयर्स है मौसम की बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जून में सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई और जुलाई में भी देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा रहने की संभावना जताई गई है। इसका असर खेती और खरीफ फसलों की बुआई पर पड़ सकता है। महंगाई भत्ते की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जुलाई 2026 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद है, हालांकि अंतिम फैसला जून के महंगाई आंकड़ों के बाद ही होगा। और भारत यूके व्यापार समझौते पर, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक व्यापार समझौते के कुछ प्रावधान जुलाई से लागू होने जा रहे हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और इसी के साथ अब अपनी दोस्त कुसुम को इजाज़त दीजिए। सखियों, हमें रहेगा आपके खत का इंतज़ार और फिर से बातों करने का इंतज़ार। तो अभी के लिए नमस्कार।

ये था महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए भोजपुरी लोकगीत। गायक कलाकार हैं सुधा सिन्हा।

0: अभी आप सुन रहे थे सुधा सिन्हा के स्वर में बरसाती लोकगीत। यह आकाशवाणी सासाराम है। अब हम थोड़ी देर में रिले करेंगे पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी पटना है। अब रउआ संजय सिंह से भोजपुरी में समाचार सुनी। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गई बा। ग्रामीण विकास मंत्रालय कहलस की बीबी जी रामजी अधिनियम के तहत हर एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार के गारंटी होगी। हमार संवाददाता बतौलन कि चालू वित्तीय वर्ष में ई योजना के लागू करे खातिर 95,692 करोड़ रुपया के प्रावधान कैल गई बा। राज्य सरकार जी राम जी योजना लागू करे के लेके बड़ पैमाने पर तैयारी कैले बिया। योजना के चलावे खातिर मुख्य सचिव के अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति के गठन कैल गई बा। संचालन समिति में ग्रामीण विकास विभाग समेत 17 गो विभागन के सचिव लोगन के सदस्य के रूप में शामिल कैल गई बा। एकरे साथे साथे जिलाधिकारी के जिला कार्यक्रम समन्वयक और उप विकास आयुक्त के अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक नामित कैल गई बा। तेल कंपनी सब 19 किलोग्राम वाला व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में 183.50 रुपया के कमी कैले बिया। इ कटौती के बाद पटना में अब 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर 3,241 रुपया में मिले लागल बा। पासपोर्ट आवेदन फीस में आज से बढ़ती लागू हो गई बा। इ बढ़ती एकदम नया पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 के तहत कैल गई बा। एकरा तहत 36 पन्ना वाला नया पासपोर्ट चाहे दोबारा पासपोर्ट बनावे के खर्चा अब 2,500 रुपया होगी। 60 पन्ना वाला साधारण पासपोर्ट चाहे दोबारा जारी पासपोर्ट के खर्चा अब 3,500 रुपया तय कैल गई बा, जबकि तत्काल योजना के तहत ई 6,000 रुपया होगी। शिक्षा विभाग TRE3 के तहत बहाल भइल उ विद्यालय शिक्षक लोगन के सेवा खत्म करे के निर्देश दिहले बा। जे लोग NIOS से 18 महीना के DLED कोर्स कैले बाड़े। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर डाही से जारी चिट्ठी में सब जिला शिक्षा पदाधिकारी लोगन के तय प्रक्रिया के पालन करते ऐसन शिक्षक लोगन के सेवा समाप्त करे और एकर जानकारी विभाग के तुरंते देवे के निर्देश दिहल गइल बा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कहले बाड़न कि राज्य के सब सरकारी अस्पतालन और स्वास्थ्य संस्थानन में CCTV कैमरा लगावल जाए। इनकर निगरानी कंट्रोल रूम से कल जाए ताकि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी लोगन के समय पर मौजूदगी पक्का कल जा सके। पटना में पत्रकार लोगन से बातचीत में मंत्री बतौलन कि अस्पतालन में दवाई के मौजूदगी और ओकर बंटवारा के नियमित मॉनिटरिंग होगी और लापरवाही मिलला पर संबंधित कर्मचारी लोगन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई कल जाए। विधान परिषद के नव निर्वाचित सदस्य लोगन के आज शपथ दिलावल गई। विधान परिषद सभागार में कैल गई कार्यक्रम में सभापति अवधेश नारायण सिंह सदस्य लोगन के शपथ दिलवैलन। भाजपा से भोजपुरी फिल्म के जानल मालन अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित शपथ लिहले। वही जे जदयू से स्वास्थ्य मंत्री निशांत, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद तथा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अशरफ अंसारी शपथ लिहले। एकरा अलावा राजद के सुनील कुमार सिंह के भी शपथ देवावल गई। राज्य सरकार भारतीय पुलिस सेवा के 12 गो अधिकारी लोगन के तबादला कर दिया ले बिया। साथ ही 53 गो उप पुलिस अधीक्षक के भी ट्रांसफर कैल गई बा। गृह विभाग ए बारे में अधिसूचना जारी कर दिया ले बा। पंकज कुमार दाराद के विशेष निगरानी इकाई से हटा के पुलिस भवन निर्माण निगम में प्रबंध निदेशक के जिम्मेदारी दिहल गई बा। अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार के विशेष निगरानी इकाई के अतिरिक्त प्रभार सौंपल गई बा। प्रीता वर्मा के गृह रक्षा वाहिनी के महानिदेशक बनावल गई बा। राष्ट्रीय जनता दल आज अपन 30वां स्थापना दिवस मनावल बा। यह मौका पर पटना में पार्टी दफ्तर में भइल कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद, कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत कई गो वरिष्ठ नेता लोग शामिल भइल। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद कहलन कि राजद देश में संवैधानिक मूल्यन के रक्षा खातिर लड़ाई जारी रखी। निगरानी जांच ब्यूरो के टीम मुजफ्फरपुर जिला के राजपुर थाना में तैनात ASI मुन्ना यादव के 8,000 रुपया घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कैले बिया।

0: गिरफ्तार पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता से केस में मदद करे खातिर घूस लेत रहन। आज राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनावल जात बा। ई दिन जनता के स्वास्थ्य के रक्षा खातिर डॉक्टर लोगन के समर्पण औरी बड़ योगदान के देखावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी औरी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार एह मौका पर सब डॉक्टर लोगन के बधाई औरी शुभकामना दीहले बाणे। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सा में मानसून सक्रिय हो गई बा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में कहल गई बा कि आज बांका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार और समस्तीपुर जिला में तेज हवा के साथ बारिश होखे के संभावना बा। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक हिजा समाप्त भइल।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। शाम के 5:00 क्षमा करेंगे, शाम के 6:10 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर।

कार्यक्रम गांव घर के साथ हम हई रनिया बहिन तो सबसे पहले करें जा स्वीकार हमार नमस्कार। श्रोता सभे भगवान ईश्वर हर जगह नहीं पहुँच सकेला, इसे वो डॉक्टर लोगन की सेवा का वरदान दे देना। जी हाँ श्रोता सभे, आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस हुए, इसे आज राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस पर हर डॉक्टर लोगन की दिल से प्रणाम आ उनके प्रति अपन कृतज्ञता व्यक्त करे के बाटे। कहे से कि आज हमनी सब स्वास्थ्य बनी जा आ अपने परिवार के साथे साथे हंस बोल रहल बनी जा अपने अपने काम के बिना कोनो परेशानी के अगर कर रहल बनी जा तो यह में डॉक्टर लोगन के बहुते बड़ योगदान बा। जब भी घर के कोनो आदमी अचानक बीमार पड़ जाना तो पूरा परिवार देखिला के घबरा जाना, वह समय सबसे पहले एक्के नाम जुबान पर आवेला डॉक्टर साहेब का। कहे से कि हमनी के भरोसा होला कि अब सब ठीक हो जाई। श्रोता सभे साँच कहीं तो डॉक्टर खाली दवाई नहीं देवेला बल्कि टूटल मन में भी हिम्मत भर देवेला। कई बार तो डॉक्टर के मीठ मीठ बात सुन करके मरीज के आधा बीमारी ठीक हो जाला। उनकर सेवा आ समर्पण के सम्मान देवे खातिर के हर साल 1 जुलाई के राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनावल जाला। ई दिन हमनी के याद दिलावेला कि डॉक्टर साहेब लोग खाली अपन पेशा नहीं निभावेला बल्कि इंसानियत के सबसे बड़ सेवा करेला। जब हमनी के आराम से अपने घर में सुतल रहिल जा तब वो न जाने कितना डॉक्टर अस्पताल में जाग जाग के कोई के जान बचावे के कोशिश करत रहेला, जूझत रहेला। हमनी के गांव में तो डॉक्टर के अहमियत और भी बढ़ जाला। श्रोता सभे, जब कोई के घर में अचानक कोई बीमार हो जाला तब पूरा परिवार एगो बढ़िया डॉक्टर अच्छा डॉक्टर के तलाश में निकल पड़ेला। कई बार तो रात हो जाला, तेज बरखा होखेला चाहे ठंडा का मौसम होखेला, फिर भी डॉक्टर मरीज के देखे खातिर के पहुँच जाला। ऐसा समय में डॉक्टर कोई के फरिश्ता से कम नहीं होखेला। श्रोता सभे, उनकर वजह से न जाने कितना घर का खुशियाँ बच जाला आ कितना बच्चन के सिर से माई बाप का साया भी हटे से बच जाला। श्रोता सभी, यही कारण बाकी डॉक्टर का सम्मान खाली की खाली एगो दिन नहीं हुए बल्कि हर दिन होखे के चाहिए। हमने के उनके समय उनके मेहनत और उनके सेवा के कद्र करे के चाहिए। जब डॉक्टर का आदर करे ल जा, उनकर सलाह मानी ल जा तो उनका अच्छा व्यवहार करे ल जा,

तब हमनी के सच्चा अर्थ में समझी तो उनके काम के सम्मान करेलन जा। देश के तरक्की में भी डॉक्टर का बहुत बड़ योगदान होखेला। कहे से कि कोई भी देश के सबसे बड़ ताकत उनके स्वस्थ नागरिक का होखेला। अगर लोग बार बार बीमार पड़े ला तो उ खाली ठीक से नहीं बढ़ पावे ना, बल्कि मेहनत से काम लेवे ना ही देश के प्रति उनके अपन पूरा योगदान दे पावे ना। ऐसे डॉक्टर खाली एगो मरीज का इलाज नहीं करेला, बल्कि पूरा समाज देश के मजबूत बनावे का काम करेला। एक स्वस्थ इंसान ही अपने परिवार, अपने गांव, अपने शहर, अपने सपना के ओकरा खातिर के एगो अच्छा कर सकेला। श्रोता सभे, आज के समय में नया नया बीमारी देख रहल बानी के सामने आ रहल बाटे। ऐसन में डॉक्टर लोग लगातार नया जानकारी सीख रहल बाना, सिखा रहल बाना, अपने जे छोट डॉक्टर बाटे उनकरा के नया तकनीक अपनाव रहल बाना आ लोगन के बेहतर इलाज देवे के भी कोशिश कर रहल बाना। कई बार उनकरा के घंटों ऑपरेशन करे के पड़ेला, कई दिन तक ठीक से आराम भी नहीं कर पावे ना, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर सेवा का भाव बनल रहेला। यह उनकर सबसे बड़ पहचान होला। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस खाली एगो कार्यक्रम नहीं है दिन, बल्कि एक दिन जौन बाटे ये दिन जौन बाई हमनी के सोचे का मौका देला कि जवन डॉक्टर के वजह से लाखों लोग नया जीवन पा रहल बना उनकरा प्रति हमनी के मन में कितना सम्मान और कितना धन्यवाद होखे के चाहिए। जब भी हमनी के कोनो डॉक्टर से मिले के अवसर मिले, हमनी के उनकर आदर सम्मान करे के चाहिए आ दिल से कहे के चाहिए, डॉक्टर साहब राउर सेवा हमनी खातिर के हमेशा बनल रहेला, ऐसे हमनी के आभारी रहल जाई। श्रोता सभे, अब आई सुनल जाओ हमनी के एक ठे लोकगीत। आज के लोकगीत के कलाकार बनी सुधा सिन्हा। यहाँ से सुनल जाओ एक ठे बरसाती गीत।

0: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता असुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार,
0: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
1: काहे की आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान,
0: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
1: डायल करें 8700014242।
0: नंबर फिर लिखी 8700014242।
2: विजुरी चमके बदरिया बरसे पिया बिन जिया लागे न, वाह कितना सुंदर बढ़िया गीत सुनैले सुधा सिन्हा जी। ए बरसाती गीत खातिन के यहाँ के बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता सभे देखी हमनी का जीवन जौन बाटे, जौन हमनी के जिए का तरीका बाटे, उनमें बहुत सारा ऐसा समस्या रहेला जौन की जुड़ल रहेला हमनी के दिनचर्या से, आ ओकर निवारण हमनी के कैसे करे के चाही, कब करे के चाही, कैसे कैसे एकरा के अपनावे के चाही, यही से सुनल जाओ, यही के टॉपिक लेकर के हमनी के सुनल जाओ एक ठे वार्ता, जेकर विषय बटे जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं और उनके निवारण। वार्ताकार बने डॉक्टर रमा मौर्य, तो सुनल जाओ।
3: व्यायाम करके हम इस सब बात से अनजान नहीं हैं कि जब से कोरोना काल खत्म हुआ है हमारे देश में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां और समस्याओं का प्रचलन तेज रफ्तार से बढ़ा है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो भारत में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के कारण हर साल 6 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जान जाती है, और यह अनुमान भी है कि 2030 तक पुरानी बीमारियों के कारण जो कि हमारे जीवन शैली के कारण हो रही हैं भारत को $6 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां आजकल एक चिंता का विषय बनी हुई हैं। अगर हम एक या दो पीढ़ी आगे देखते हैं, जैसे कि हमारे दादा दादी या नाना नानी को देखते हैं, तो उनके जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों क्या जो प्रकोप था वो ना के बराबर था, लेकिन जैसे जैसे हमने अपने खान पान और दिनचर्या शारीरिक श्रम में बदलाव किया इसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर देखने को मिला है। हम ये भी जानते हैं कि स्वास्थ्य और स्वस्थ

जीवन शैली कोई एक दिन में तो बनता नहीं है। इसमें छोटे छोटे प्रयासों की एक श्रृंखला शामिल होती है जो हमारे जीवन को खुश और स्वस्थ रखने योग्य बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए जानते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली की आदतें क्या क्या हो सकती हैं। स्वस्थ जीवन शैली की आदतें जैसे आपको पौष्टिक भोजन खाना है, नियमित रूप से व्यायाम करना है, पर्याप्त नींद लेना है, धूम्रपान नहीं करना है, ध्यान और योग जैसी तनाव कम करने वाली गतिविधियां करना है, शरीर का सामान्य वजन बनाए रखना है, नियमित रूप से शारीरिक जांच करवानी है, आदि सारे काम जो हैं ये करके हम अपने जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आइए जानते हैं कि शारीरिक समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं जो हमें हमारे जीवन शैली से जुड़ी होती हैं। तो अगर हम जीवन शैली से संबंधित बीमारियों को देखें तो इसमें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मोटापा, मधुमेह, ऑस्टियोपोरोसिस जो कि हड्डियों की बीमारी है, PCOD आदि बीमारियां शामिल होती हैं। तो ये भी तो हमें जानना है। तो चलिए जानते हैं कि इन सब बीमारियों के कारक क्या हैं। जैसे कि हम पहला देखते हैं अगर उच्च रक्तचाप को, तो अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, मोटापा हमारा ज़्यादा है, उच्च तनाव स्तर है, धूम्रपान अधिक कर रहे हैं, अस्वस्थकारी आहार ले रहे हैं जैसे ज़्यादा तला भुना खा रहे हैं, ज़्यादा प्रोसेस किया हुआ भोजन कर रहे हैं, ज़्यादा नमक युक्त पदार्थ खा रहे हैं, तेल का प्रयोग कर रहे हैं जो कि रिफाइंड है, पूरी तरह से प्रोसेस किया वाला तेल है जिसमें संतृप्त वसा ज़्यादा होता है, इस तरीके से मोटापा को अगर देखें तो अस्वस्थकारी खान पान की आदतों से व्यावसायिक कारण भी हो सकते हैं, व्यायाम की आदत नहीं है उससे भी मोटापा बढ़ता है। मधुमेह की अगर बात करते हैं तो अगर हम देखते हैं ज़्यादा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ का सेवन करने से, कृत्रिम मिठास का सेवन करने से, ज़्यादा चीनी लेने से, डिब्बा बंद कोल्ड ड्रिंक जिसमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरी पाया जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कैलोरी मिलती है, कोई पोषक तत्व नहीं मिलता है, उसका सेवन करने से कई बार आनुवंशिक कारण भी हो सकता है मधुमेह का। उच्च रक्तचाप को अगर हम देखें तो कई शारीरिक गतिविधियां ना करने से, मोटापा की वजह से, धूम्रपान करने से, कम पोटेशियम का सेवन करने से, ज़्यादा सोडियम जिसे हम नमक कहते हैं उसका सेवन करने से, उच्च तनाव स्तर होने से, ये सारे कारण होते हैं जो उच्च रक्तचाप को बढ़ाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की अगर बात करते हैं तो इसमें विटामिन डी की कमी होने से, अत्यधिक कैफीन का सेवन करने से, कम कैल्शियम का सेवन करने से, महिलाओं का मासिक धर्म रुक जाने से, शराब का सेवन करने से और थायराइड ग्रंथि के अधिक सक्रिय होने से। अगर हम PCOD को देखते हैं तो ये एक हार्मोनल समस्या है जो कि आजकल हर तीसरे महिला में देखा जा रहा है। तो इसका कारण हो सकता है पहला तो हार्मोन का असंतुलन, दूसरा अनियमित खान पान, वजन का बढ़ना, तनाव अधिक लेना, नींद की कमी, थायराइड रोग, डायबिटीज आदि इसके कारण हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि ये सब बीमारियां तो हो रही हैं हमारे जीवन शैली के कारण, लेकिन क्या हम खान पान को बेहतर करके, जीवन शैली को बढ़िया करके इन सब बीमारियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं? हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा हमारा मन। अंग्रेजी में अगर एक लाइन में कहें तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम ऐसी बीमारियों को बनने ही ना दें जो हमारे आदतों से पनप रही हैं। अगर हम आगे बात करें तो हाँ, अगर आप शुरुआती लक्षणों को देखते हैं तो अपने खान पान को सुधार कर, नियमित व्यायाम करके बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आप दवाइयों पर निर्भर हो गए तो जीवन भर आपको इनका सहारा लेना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि खाने की कौन सी आदतें हो सकती हैं जिनसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था पहले भी और अभी भी कह रहे हैं कि रिफाइंड ऑयल की जगह सरसों का तेल प्रयोग कीजिए, घी का प्रयोग कीजिए, कोशिश करें कि जमा हुआ वनस्पति घी, डालडा अपने आहार में ना लें, मौसमी फलों और सब्जियों का भरपूर सेवन करें, पर्याप्त साबुत अनाज का सेवन करें तथा चीनी आधारित पेय पदार्थों का सेवन कम से कम करें, ज़्यादा नमक का सेवन सीमित करें। अगर आप मांसाहारी भोजन खाते हैं तो लाल मीट की जगह आप ताजे पानी की मछलियों का सेवन करें। दैनिक शारीरिक गतिविधि बनाए रखें, कोशिश करें कि थोड़ा पैदल चलें अथवा साइकिल का प्रयोग करें। सबसे जरूरी बात कि खाना खाते समय TV या मोबाइल ना देखें, भोजन को चबा कर खाएं, मादक पदार्थों और कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग न करें। और कुछ ऐसे स्वास्थ्य संबंधित सलाह हैं जिन्हें आप ध्यान रख सकते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य में अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो अगर हम बड़े बुजुर्गों को अपने देखें तो उन्होंने अक्सर यही कहा है हमसे कि हमारा

0: शरीर तो निरोगी है, हम सब खाते हैं, सब पचा लेते हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो लोग कितना शारीरिक श्रम करते थे। परंतु आज का जीवन शैली वैसा नहीं रह गया है, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें या शहरी क्षेत्रों में। तो ऐसे में कुछ तरीकों को अपना कर हम जरूर अपना स्वास्थ्य सुधार सकते हैं, और जिसमें कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम अवश्य करें, अपने लोकल एरिया में मिलने वाले ताजे मौसमी फलों का सेवन करें, सब्जियों का सेवन करें, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। अगर कोई आपको बीमारी हो भी गई है तो उसमें जो भी परहेज आपके डॉक्टर ने आपको बताया है उसका नियमित पालन करें, परहेज का ध्यान रखें, दवाइयों को लेते रहें, तनाव ना लें, तनाव से समस्या दूर नहीं होती है, उसका समाधान खोजें और खुश रहें, दिमाग को शांत और चित्त को प्रसन्न रखें, सकारात्मक सोचें और शारीरिक जांच अवश्य करवाएं।
1: श्रोता सभे, जीवन से जुड़ल हमनी के तमाम तरह के समस्या का निवारण कैसे करे के चाहिए, डॉक्टर रमा मौर्य जी बहुत बढ़िया से बतैली। ऐसे इनकरा खातिर के बहुत बहुत धन्यवाद दे दहल जा। श्रोता सभे, देखी कहल जाला कि पेड़ बची तो जीवन बची, जीवन बची तो भविष्य मुस्कुराइबे करी। देखी अगर धरती पर पेड़ नहीं रही तो सोची हमनी के जीवन कैसन होखी, न सांस लेवे खातिर के साफ हवा मिली, न तेज घाम से बचे खातिर के छाया मिली, और न ही समय पर बरखा बुन्नी होखी। ऐसे हमनी के बड़ बुजुर्ग हमेशा कहत रहा कि एक पेड़ सौ पुत्र के समान होखेला, ई बात आज भी उतने साँच बाटे। श्रोता सभी, पेड़ खाली हमनी के लकड़ी चाहे फल नहीं देवेला, बल्कि हमनी के जीवन का सबसे बड़ सहारा हुए। हमनी के जवन सांस ले रहल बानी जा, ओहमें भी पेड़ का बहुत बड़ योगदान बाटे। यही से तो पेड़ की प्राण वायु कहल जाला। यही बात के समझावे आ लोगन के पेड़ लगावे खातिर के प्रेरित करे के उद्देश्य से हरेक साल 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनावल जाला। ई खाली सरकारी कार्यक्रम नहीं हुए, बल्कि हमने सबका जिम्मेदारी का सप्ताह हुए। अगर हर आदमी यह सप्ताह के खाली एक पौधा लगावा और उनकर देखभाल करे का संकल्प ले लें तो कुछे साल में कुछे बरिस में हमने का गांव, हमने के शहर, माने पूरा देश फिर से हरा भरा हो सकत बाटे। श्रोता सभी, पेड़ लगावल तो आसान हुए, लेकिन ओकरा के बड़ा कैल सबसे बड़ जिम्मेदारी हुए। जैसे कि हमने के अपने बच्चन के, छोट छोट बच्चन के देखभाल करे लन जा, वैसे ही पेड़ पौधा के भी समय समय पर पानी देवे के होई, खाद देवे के होई, जानवर से बचावे के होई, उनकर सुरक्षा रक्षा करे के होखी, तब वे उ बड़ होकर के हमने के छाया दिया, फल दिया, फूल दिया, शुद्ध हवा पानी दिया। आज हमने के देखत बन जा कि दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़त जा रहा बाटे। पहले जैसन ठंडा हवा, घना पेड़ का छाया आ समय समय पर बरखा अब नहीं होखत, जब्बे तब्बे होखे लगत बाटे। कबो एक बार तेज आंधी आवे लगत बाटे तो कबो एकदम माने गर्मी के दिन में, जाड़ा के दिन में बरखा बुन्नी होखे लगत बाटे। एकर सबसे बड़ कारण ये बा कि हमनी के पेड़ तो लगावत बनी जा, लगा करके कुछ लोग लगावत बना, लेकिन काट देत बनी जा, लेकिन उतने से नहीं होखी। श्रोता भाई बहन, अगर ये हाल रही तो आवे वाला पीढ़ी बहुत बड़ परेशानी का सामना करे के पड़ी। ऐसे अभी से जागना जरूरी बाटे, प्रकृति के रक्षा कैल बहुत जरूरी बाटे। वन महोत्सव सप्ताह ये हमने के सिखावेला कि खाली सरकार के भरोसे हमने के नहीं काम करे के, सरकार के भरोसे नहीं बैठल रहे के, एकरा में हमने सब कभी भागीदारी बाटे। चाहे किसान होख, छात्र होख, शिक्षक होख, व्यापारी होख, गृहिणी होख, हर आदमी की, हर व्यक्ति का ही कर्तव्य बा कि अपने आसपास जितना जगह हो सके, छोट मोट भी जगह हो सके, वहाँ पेड़ लगाई, दूसरे लोगन के भी एकरा खातिर के प्रेरित करी। अगर हर परिवार हर साल 1-2 पौधा भी लगाई और उनका के बड़ होके तक संभाली, रक्षा करी, उनका देखी, ताकि तो कुछ साल में देखी पूरा गाँव के तस्वीरें बदल जाए। श्रोता सभे, वन महोत्सव सप्ताह ये हमनी के सिखावेला कि हमनी के सरकार के भरोसे नहीं बैठे के काम करे के बाटे। पेड़ हमनी खातिर के बहुत कुछ देवेला, वो हमनी के सांस लेवे खातिर।

के शुद्ध हवा देवेला, गर्मी में ठंडा छाया देवेला, फल फूल पक्षी के रहे खातिर के घर देवेला, आ धरती का संतुलन बनाए रखे खातिर के पेड़ का रक्षा कैल हमनी के बहुत जरूरी बाटे। ई कोनो एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि हमनी सब का जिम्मेदारी बाटे। श्रोता सभे हमनी के अपने घर के साफ सुथरा रखी लन जा, अंगना के सजाई लन जा, खेत के देखभाल करी लन जा, ठीक वही तरह से अपने गांव के आसपास के पेड़ पौधा के भी हमनी के चिंता करे के पड़ी। अगर कहीं कोई पौधा सुखा रहल बाटे तो ओकरा के पानी देही, अगर कोई बिना वजह हरा भरा पेड़ काट रहल बाटे तो ओकरा के बड़ा प्यार से समझाई कि पेड़ काटल आसान है वे, लेकिन ओकरा के बड़ होखे में कई साल लग जाला। एक पेड़ काटे में तनको देर नहीं लगे, ओकरा से हमनी के खाली लकड़ी मिल सकत बाटे। ओकरे साथे साथे देखी कि एकरा पीछे हमनी के अनगिनत चिड़िया चुरुगन पशुअन का जौन भी बाटे, चारागाह बाटे, घर का जौन बा हमनी के घर बनवावत, चाहे लकड़ी से जितना भी हमनी के घर में बनत बा, लकड़ी के चौखट से लेकर के खटिया चौकी पलंग मने हर चीज लकड़ी से भी बन रहल बाटे। लेकिन श्रोता सभे जब हमनी के पेड़ के काटल जाए लगावल जाए नहीं तो हमनी के जौन प्राण आयु वायु बाटे वो कैसे लेहल जाए, कहाँ से हमनी के शुद्ध सांस मिली शुद्ध हवा मिली, सब खत्म हो रहल बाटे। ये हमनी के जौन कोरोना काल रहे वो हमनी के समझा दहलस सिखा दहलस कि हमनी के जीवन में पेड़ का ऑक्सीजन का कितना महत्व बाटे। श्रोता सभे यही से हमनी के बढ़ चढ़ करके यह 1 से 7 जुलाई तक के वन महोत्सव सप्ताह पर हमनी सब मिलजुल करके एक संकल्प लें जा कि एक व्यक्ति एक पौधा और उनका पूरा जिम्मेदारी, यह छोट छोट प्रयास आवे वाला समय में धरती के हरा भरा बना सकेला, आ आवे वाला पीढ़ी के भी एगो सुंदर स्वच्छ आ सुंदर स्वच्छ वातावरण भी रख सकेला। श्रोता सभी अब हमनी के एक नज़र मौसम आधारित कृषि परामर्श पर भी हमनी के नज़र डाल लेल जाओ। देखिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 1 से 5 जुलाई के दौरान जिला में 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले आ हल्का मध्यम बरखा होखे के अनुमान बटे। एकरे अलावा जिला के 1-2 स्थान पर भारी बरखा होखे के भी संभावना बाटे। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बाटे। सापेक्ष आर्द्रता सवेरे 80 से 85% और दोपहरिया में 25 से 30% रहे के संभावना बाटे। पूर्वानुमान अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दक्षिण आ पूर्वा हवा चले के भी अनुमान बाटे। जिला के 1-2 स्थान पर मेघ गर्जन वज्रपात तेज सतही हवा आ झोंकेदार हवा चले के भी संभावना बाटे। आंधी बिजली आ तेज हवा से फसल गिरे के आशंका बाटे। किसान के खेत का कार्य स्थगित करे आ फसल व पशुअन के सुरक्षित रखे के सलाह देहल जा रहल बाटे। ओकरे अलावा आगामी दिन में बरखा के संभावना के देख करके खड़ा फसल में सिंचाई स्थगित कर दही आ खाद कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहले पर ही करी। आगामी दिन में देखी जौन हमनी के अभी चावल का भी चल रहा बाटे, वर्तमान मानसून के कमजोर स्थिति के देख करके किसान के सलाह ई दहल जा रहा बा कि ऊंचा भूमि में धान का खेती एकदम न करी आ जौना किसान के पास सिंचाई का सुविधा उपलब्ध बाटे उ मध्यम अवधि वाला धान के किस्म का बिचड़ा गिराई आ बीज स्थली में नमी बनावे खातिर के जरूरी बाटे। आ आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक सिंचाई करी धान के किस्म जैसे कि सबौर मोती धान सबौर सोना आदि का सीधा बुआई भी कर सकत बानी। अगर जिला में भारी वर्षा होत बाटे तो धान के नर्सरी में जल भराव बचे खातिर के ओकरा के उचित जल निकास का व्यवस्था हुआ कर ले। खरीफ मक्का का बुआई आसमान साफ रहले पर ही करी। खेत का जुताई में 10 से 15 टन गोबर का सड़ल खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करी। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन 30 किलो स्फुर आ 50 किलो पोटास का व्यवहार करी। अनुशंसित मक्का का किस्म जैसे कि सुमान देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 गंगा 11 ये सब रुआ खेती कर सकत बानी। श्रोता भाई बहन अब हमने के समय जौन बाटे कि एकदम अब उरा चलल बाटे अब गवाही नहीं खे देत बोले के तो यह कार्यक्रम के गांव घर कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही संतोष कुमार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत।

दुल्हा गंगा पार के। अभी आप सुन रहे थे चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की आवाज़ों में इस फिल्म का ये गीत। गीत और संगीत लक्ष्मण शाहबादी का था। श्रोता, इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। अब लीजिए सुनिए गंगा किनारे मोरा गांव फिल्म से ये गीत उषा मंगेशकर की आवाज में। बोल है लक्ष्मण शाहबादी के और संगीत दिया है चित्रगुप्त ने।

0: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देहियों के बुलंदियन के पाख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
0: तो बुकिंग खातिर संपर्क करें 870-001-4242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 870-001-4242।

0: आशा भोसले के गाए धरती मैया फिल्म के इस गीत के साथ ही भोजपुरी फिल्म गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे केंद्र से प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आज बुधवार का दिन है और लेकर आ गया पैरा मेडिकल है पारस। जी हां, पैरा मेडिकल है पारस में हम बातें करते हैं हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद रोजगार की भी स्वरोजगार की भी। अगर जो रोजगार है तो सरकारी क्षेत्र के रोजगार और निजी क्षेत्र के रोजगार की भी बात करते हैं। कहते हैं कि कोविड के बाद से इतना वाइब्रेंट हो चुका है हेल्थ सेक्टर कि पढ़ते पढ़ते ही रोजगार मिल जाता है या कमाना शुरू कर दिया जाता है। पैरामेडिकल है पारस हम लेकर आते हैं राज्य की एक विशिष्ट संस्था है पैरामेडिकल की, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है। उनकी तरफ से उनका मानना है कि बिहार के अंतिम युवा तक बातें पहुंच जानी चाहिए कि अगर वो हेल्थ सेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए रोजगार ले लेना बहुत कठिन कार्य नहीं है। हम नंबर बताते हैं इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद आप चाहे तो डायल कर सकते हैं। नंबर नोट करें 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233। ये नंबर है, इस पर आप बातें कर सकते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर NP प्रियदर्शी, तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किस मुद्दे पर बात होगी जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बात करना चाहिएगा पैरामेडिकल के बारे में बताइए।
3: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं। हाँ। बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है।
2: जानकारियों का अभाव है। हाँ।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
2: जी
3: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
2: जी।
3: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ ISC बायोलॉजी और BSc करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई। तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होता है, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता है।
2: जी।
3: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
2: बिल्कुल।
3: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि BPT हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है। और उसके बाद BHM हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
2: जी, एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
3: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
2: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
3: बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा। और जहां तक और

0: बढ़ ही रही है।
1: हाँ।
0: मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
1: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया आपसे।
0: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
1: तो आप जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
0: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा। यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
1: जी।
0: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जाकर करके आगे बढ़ सकता है।
1: फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए। जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
0: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा के ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
1: जी।
0: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सिट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांगे नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे?
1: सही।
0: अब फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की जवाब आवश्यकता नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा?
1: सही बात है।
0: और इसकी महत्ता बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है कोई भी विषय हो। जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश और डॉक्टर NP प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों आपको हम ये बताना

0: आते हैं जिनको करियर निर्माण करना है, एक दो तीन साल के अंदर आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
1: जी?
0: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
1: 2023 से
0: पढ़ाई लिखाई के बारे
1: जी,
0: में
1: जी, जी।
0: पढ़ाई लिखाई के बारे में
1: बिल्कुल, मैं तो पहले ही इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता। हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं और लोगों और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
0: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
1: उसकी इच्छा उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए, उसकी इच्छा कहीं भी। नौकरियां सभी जगह है,
0: नौकरियां सही जगह हैं, डॉक्टर साहब ने कहा, इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
1: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
0: क्या पढ़ाई होती है?
1: दोनों में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ समान है, उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी सारे देते ही हैं, उसमें ऐड क्या हो गया ऐसा समझिए। ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
0: अच्छा,
1: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
0: ऑक्यूपेशन व्यवसाय
1: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
0: जॉब ओरिएंटेशन,
1: हाँ, जिसमें उसकी रुचि है उसके लाइक उसको बना देना।
0: अच्छा,
1: अगर मान पैर कट गया तो वो दौड़ तो नहीं सकता है, जाप नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको और क्या क्या ऑक्यूपेशन है जिसको वो समझाता है, बताता है और इस पर उसको आगे बढ़ा देता है, तो यही ऑक्यूपेशन थेरेपी है। और ये आजकल जो है, आज चूंकि हम लोग के नजरों में नहीं आता है, लेकिन एक जगह कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रोज इस भागदौड़ की जिंदगी में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, कितने क्या हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जिस लाइक है उस लाइक को बनाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है।
0: यही काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है, बिल्कुल। ये फिजियोथेरेपी, हाँ, जो है ना उसका सगा भाई है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और उससे कुछ कदम आगे है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त नहीं है, आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, पढ़ाई करना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपने दूर की कि ये सारी चीजें गलत है, इस पर कहीं से विचार करने की जरूरत नहीं है, जमकर पढ़ाई कीजिए, आगे सोचिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर बहुत ही उम्दा है, आप इसमें अपना करियर आजमा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो नंबर नोट कर लें, एक बार फिर से बता रहे हैं 9155558888 9155558888, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233, ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए। और इसे कहीं से विज्ञापन नहीं समझिए, ये सहूलियत है आप युवाओं के लिए। फिलहाल चलने का वक्त हो गया, राजेश आज निकलता है, अगले बुधवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज

0: Nursing Training and Paramedical Institute.
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:15 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। श्रोता, इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे रोहतास जिले के कुछ स्थानीय गतिविधियों के बारे में और एक फिल्मी गीत भी सुनवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। जिलाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्र ने सदर अस्पताल का अचूक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति तथा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने विभिन्न वार्डों, ओपीडी, ट्रामा सेंटर, मातृ शिशु अस्पताल सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति का भी सत्यापन कराया। जिलाधिकारी ने मरीजों से फीडबैक भी लिया। जिलाधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया कि सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं मरीजों को समय पर उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि अस्पताल आने वाले प्रत्येक मरीज के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए तथा इलाज, जांच, दवा वितरण एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने कार्यालय एवं कार्यस्थल पर निर्धारित समय पर उपस्थित रहें तथा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप अपने अपने दायित्वों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में अनुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अचूक निरीक्षण आगे भी लगातार जारी रहेंगे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने नगर निगम की टीम के साथ सदर अस्पताल परिसर में जल जमाव की समस्या का भी स्थलीय निरीक्षण किया। जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु उन्होंने नगर आयुक्त नगर निगम सासाराम को निर्देश दिए। सासाराम शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाने तथा जाम की समस्या से अस्थायी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी रोहतास दीपक कुमार मिश्र द्वारा प्रमुख स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने चौक चौराहों एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों का भ्रमण कर जाम होने के प्रमुख कारणों की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान यातायात संचालन को और अधिक सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नगर आयुक्त नगर निगम सासाराम को आवश्यक निर्देश दिए गए।

आज दिनांक 1 जुलाई 2026 को जिला पदाधिकारी रोहतास द्वारा राजकीय डिग्री महाविद्यालय शिवसागर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम

जुलाई माह से डिग्री महाविद्यालय में संचालन प्रारंभ से संबंधित किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। साथ ही शिवसागर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च मध्य विद्यालय आलमपुर एवं मध्य विद्यालय आलमपुर का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें माध्यमिक विद्यालय में आज से संचालित वर्ग 9 से 12 का परीक्षा, आईसीटी लैब, उन्नयन कक्ष, प्रयोगशाला आदि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान माध्यमिक विद्यालय में बेसिन से पानी की निकासी नहीं होने पर अविलंब सही करने हेतु प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया गया। राजकीय डिग्री महाविद्यालय में किए जा रहे विकास कार्यों एवं विद्यालय संचालन पर संतोष व्यक्त किया गया। तो श्रोताओं, ये थी कुछ स्थानीय गतिविधियां और अब हम सुनवा रहे हैं एक गाना और इसे हमने लिया है मिस्टर इंडिया फिल्म से। आवाज़ है किशोर कुमार की।

0: और श्रोताओं इसी के साथ हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हम अपने पटना केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत श्रीराम जी अधिनियम आज से लागू। राज्य सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी बनाया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा, राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। बिहार विधान परिषद के सभी 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव रहे मौजूद। और मौसम विभाग ने कल कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि पीवी जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। एक रिपोर्ट।
1: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत प्रदेश के लिए 6,715 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट तय किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए अकुशल मजदूरी मद में राज्य सरकार ने 1,890 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। श्री कुमार ने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी।
3: विकसित भारत जी राम जी योजना आज से शुरुआत की जा रही है। इससे देश भर के जो श्रमिक हैं उनको बहुत लाभ होने वाला है। साल में 125 दिन काम देने का इसमें प्रावधान किया गया है और आपदा से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ मौसम आधारित योजना बनाने का ये अधिकार ग्राम पंचायत को दी गई है और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर भी विशेष जोर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि बीवी जी राम जी योजना लोगों के लिए मील का पत्थर साबित।
0: इधर हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार ने जी राम जी योजना लागू करने को लेकर व्यापक तैयारी की है।
4: विकसित भारत जी राम जी योजना के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति का गठन किया गया है। संचालन समिति में ग्रामीण विकास विभाग समेत 17 विभागों के सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को जिला कार्यक्रम समन्वयक और उप विकास आयुक्त DDC को अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक नामित किया गया है। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्राम पंचायतें 10 लाख रुपए तक, प्रोग्राम ऑफिसर 15 लाख तक, DDC 1 करोड़ और जिलाधिकारी 30 करोड़ रुपए तक की योजनाएं स्वीकृत कर सकेंगे। समाचार कक्ष से निदेशश्री।
0: राज्य सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी बनाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव

0: अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि योजना के तहत कार्यरत और कुशल मजदूरों के लिए 7 घंटे के कार्य दिवस के आधार पर मिट्टी कटाई जैसे कार्यों की निर्धारित दर को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
1: विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया तथा इसके कार्यान्वयन हेतु पूर्व से गठित संस्थागत संरचना को अधिकृत करने की स्वीकृति दी गई। न्यूनतम मजदूरी का दर 256 था, बढ़ा करके शायद 300 कर दिया गया है।
0: मंत्रिमंडल ने 5 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 5-5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। ये केंद्रीय विद्यालय पूर्णिया, राजगीर, शेखपुरा, मधेपुरा और मधुबनी में खुलेंगे। कैबिनेट ने राज्य के 31 बस स्टैंड को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन संशोधन नियमावली 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी प्रदान की है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने 34,59,00,000 रूपये की लागत से गन्ना यांत्रिकीकरण योजना और 37,93,00,000 रूपये की लागत से एक विकास योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। साथ ही कैबिनेट ने वीरपुर हवाई अड्डा के विकास के लिए 88 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 29,56,00,000 रूपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी। इसके अलावा कैबिनेट ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर बिहार के 1100 श्रद्धालुओं के लिए 20 जुलाई से 2 दिवसीय सोमनाथ यात्रा को मंजूरी दी। यात्रा के आयोजन और श्रद्धालुओं की व्यवस्था पर 2,50,00,000 रुपए खर्च होंगे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी ताकि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और वितरण की नियमित मॉनिटरिंग होगी तथा लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: हमारे जितने सरकारी संस्थान हैं स्वास्थ्य, उन पे हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जिससे मैं अपने विभाग से ही उनको मॉनिटरिंग कर सकूं। अगर कोई अनियमितता लगी तो उस पर कार्रवाई होगी। जब से स्वास्थ्य मंत्री का पदभार संभाला हूं, कई समस्या सुनने को मिली है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है अनअवेलेबिलिटी, चाहे वो नर्स हों, डॉक्टर हों, पैरामेडिकल्स हों। तो हमारी कोशिश रहेगी कि डॉक्टर टाइम से ड्यूटी करें और मरीजों का इलाज ठीक से ठीक करें।
0: स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य के एनएच और एसएच पर 100 नई एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई। विधान परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदस्यों को शपथ दिलाई। भाजपा से भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूक, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित ने शपथ ली। वहीं जदयू से स्वास्थ्य मंत्री निशांत, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद तथा लोक जनशक्ति पार्टी से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अशरफ अंसारी ने शपथ ली। इसके अलावा राजद के सुनील कुमार सिंह को भी शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य मौजूद थे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: भागों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। भागलपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में भारी बारिश दर्ज की गयी। गोपालगंज के भोरे में सबसे अधिक 92.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी। मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
1: दिनांक 2 जुलाई राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण एवं सिवान जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। कटिहार, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सुपौल एवं वैशाली जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में बांका जिले में 3 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि रजौन, कटोरिया और धोरैया थाना क्षेत्रों में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। यह दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह दिवस हर वर्ष 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है बिहाइंड द मास्क, हु हील्स द हीलर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। साथ ही 53 पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी का भी स्थानांतरण किया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पंकज कुमार तारात को विशेष निगरानी इकाई से हटाकर पुलिस भवन निर्माण निगम में प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार को विशेष निगरानी इकाई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रीता वर्मा को गृह रक्षा वाहिनी का महानिदेशक बनाया गया है। राष्ट्रीय जनता दल आज अपना 30वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पटना स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद, कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि राजद देश में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगा। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के राजपुर थाना में पदस्थापित एएसआई मुन्ना यादव को 8000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता से केस में मदद करने के नाम पर रिश्वत ले रहा था। बगहा की एक अदालत ने चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र से पुलिस ने उपद्रव और तोड़फोड़ के मामले में फरार चल रहे 40 में से 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत हवाई अड्डा के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति के घर

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश

Akashwadi at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नवादा जिले की हलचल। नवादा जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी।
1: जून माह समाप्त हो चुका है, जिले में मॉनसून अब तक नहीं पहुंचा है। इसके चलते खरीफ की खेती प्रभावित हो रही है। सामान्यतः 15 जून तक जिले में दस्तक देने वाला मॉनसून इस बार एक पखवारे से अधिक की देरी से चल रहा है। बारिश नहीं होने से जिले में धान की बुआई पिछड़ गई है। कृषि विभाग ने इस साल 90,124 हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए करीब 9,000 हेक्टेयर में बिचड़ा तैयार किया जाना था, लेकिन लक्ष्य के मुताबिक बिचड़ा आच्छादन नहीं हो सका है। किसान पंप सेट के सहारे खेत तैयार करने में जुटे हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ रोशन कुमार के अनुसार प्रशांत महासागर में सक्रिय अल नीनो के कारण मॉनसून कमजोर पड़ा है, जिससे वर्षा में कमी आई है। उन्होंने किसानों को धान के साथ साथ मक्का, मड़ुआ और अन्य मोटे अनाज जैसी कम पानी वाली फसलों पर भी ध्यान देने की सलाह दी है। बिहार सरकार की अभिनव पहल के तहत प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को आयोजित होने वाले पंचायत विकास दिवस के अवसर पर नवादा जिले की सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम महिला हितैषी ग्राम पंचायत रही, जिसके कारण ग्राम सभाओं में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। इस मौके पर महिलाओं ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी एवं सशक्तिकरण योजनाओं से अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को साझा किया और पंचायत स्तर पर उनकी भागीदारी को और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक प्रसारण भी किया गया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना तथा विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। अकबरपुर प्रखंड की माखर पंचायत में आयोजित विशेष ग्राम सभा में बिहार के लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पंचायत विकास दिवस केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रभावी मंच है। ग्राम सभा में लिए गए निर्णय गांव के विकास की दिशा तय करते हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक, विशेषकर महिलाओं एवं युवाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। नवादा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। केंद्रीय विद्यालय के लिए सोभिया स्थित चिन्हित 5 एकड़ भूमि का हस्तांतरण केंद्रीय विद्यालय संगठन के नाम रजिस्ट्री के माध्यम से कर दिया गया है। इसके बाद जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि विद्यालय की स्थापना संबंधी अन्य औपचारिकताएं भी शीघ्र पूरी हो सकेगी। इसके बाद नवादा के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरा होने के अवसर पर जिला भाजपा द्वारा मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और गरीब कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन और हर घर जल जैसी योजनाओं से करोड़ों परिवारों को लाभ मिला है। वहीं किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा युवा

0: के लिए स्टार्टअप और स्वरोजगार योजनाएं प्रभावी साबित हुई है। विवेक ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं तथा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा।
1: ये 12 साल विकास, स्वास्थ्य और जन कल्याण का यात्रा, आज हम आगे बढ़ गए हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जिस पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सामाजिक रूपेण जो है हर पहलू को उठा दिया।
0: नवादा जिले में रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से राहत के लिए 9 व्यस्त रेलवे फाटकों पर रेल ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पथ निर्माण विभाग ने पिछले वर्ष रेलवे बोर्ड के अनुरोध पर सभी 9 प्रस्तावित स्थलों का भौतिक सत्यापन कर अनापत्ति प्रमाण पत्र भेज दिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार DPR तैयार होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
2: अभी आप सुन रहे थे नवादा जिले की हलचल। नवादा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता अशोक कुमार प्रियदर्शी। आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात, गृहमंत्री अमित शाह का नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान, और जानेंगे
3: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है ईमेल फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त लाल बहादुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं आप सबकी फरमाइश पर गंगा की लहरें फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। मजरू के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत। फरमाइशी मेल किया है हमारे श्रोता गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी साक्षी, अच्छे लाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। नयनगर सुपौल से श्वेता रंजन विद्यार्थी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार निराला और चिलना झा। और ये हमारे श्रोता हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौण। शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और आपके परिवार के सभी सदस्य। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से हमारे श्रोता हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। तो चलिए आप सब की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं गंगा की लहरें फिल्म का ये गीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं कार्यक्रम ई मन पसंद अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर के साथ। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं ये अगला गीत। और हमने लिया है सूरज और चंदा फिल्म से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, आनंद बख्शी की बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और इस गाना को सुनना चाहते हैं मोताला महाराष्ट्र से हमारे श्रोता विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार। और नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहनाज, तलत जहनाज, फरहत जहनाज, रिफत जहनाज, नुजहत जहनाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज ने भी इसी गाने को सुनना चाहा है। और ये हमारे श्रोता हैं कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निकहत परवीन, सदा फारजू, सादिया तस्नीम और अलीशा। तो लीजिए आप सब सुनिए अपनी पसंद पर सूरज और चंदा फिल्म का ये गीत।

इसी गाने के लिए मेल किया है हमारे श्रोता करणबीर हाउस भोजो कंचिया बठिंडा पंजाब से परेम सिंह जौडा, मनजीत कौर जौडा, करणबीर करण, दपिंदर बरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत।

ई मनपसंद कार्यक्रम में अब हम सुन रहे हैं बेताब फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने।

और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह। यहीं से हमारे श्रोता हैं शुभदीप सिंह और इसी गाने को सुनना चाहते हैं अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती देवी, वनिता वर्मा और रुद्र वर्मा। तो चलिए हम आप सबों की पसंद पर सुनवा रहे हैं बेताब फिल्म से ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं कार्यक्रम ई मन पसंद। चलिए अब कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं आप सबकी पसंद पर मिलन फिल्म से ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में और गीत के बोल हैं सावन का महीना पवन करे शोर। श्रोताओं हालांकि सावन का महीना अभी नहीं आया है लेकिन ये गीत सचमुच बहुत खूबसूरत है। तो इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गढ़नोखा लालगंज रोहतास से राजकिशोर सिंह और बड़क सिंह, ग्राम खरवत गढ़नोखा से मोतीमाला गुप्ता लाल बिहारी सिंह और बीरा सिंह, ग्राम पौजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चनलौसिया, आदर्श

सार्थक अलौकिक चालोसिया। और ये हमारे श्रोता हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। ग्राम नहोना सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। नयका गांव धर्मशाला सासाराम से इसी गाने के लिए फरमाइश की है। हमारे श्रोता हैं राजेंद्र सिंह, शकुंतला देवी, प्रीति कुमारी, राहुल और बादल। तो चलिए हम आप सबों की पसंद पर पेश कर रहे हैं मिलन फिल्म का ये गीत।

0: सावन का महीना पवन करे शोर।
1: सावन का महीना पवन करे शोर।
0: पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर। हाँ,

आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ई मनपसंद। चलिए अब आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं पाकीजा फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। कैफे आजमी के बोल हैं और गुलाम मोहम्मद का संगीत, और फरमाइश करने वाले श्रोता हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मीफरा नवाज और बेबी चाहत। और ये हमारे श्रोता हैं मरहरा दरवाज़ा एटा से नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यसफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और रसीद वारसी। गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, एसएम जावेद और सगुप्ता अंजुम। तो चलिए हम सुनवा रहे हैं आप सबकी पसंद पर पाकीजा फिल्म से ये खूबसूरत गीत।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं कार्यक्रम ई मन पसंद अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर के साथ। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं आप सबकी पसंद पर शर्मिली फिल्म से ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, नीरज के बोल हैं और एसडी बर्मन का संगीत। सुनना चाहते हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। करेली बरेली से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद आमिर असारी, शमीम अंसारी, माहे नूर अंसारी और आपके परिवार के सभी सदस्य। और आप सब हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और आपके परिवार के सभी सदस्य। तो चलिए हम सुनवा रहे हैं आप सबकी पसंद पर शर्मिली फिल्म से ये गीत।

कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं प्रेम कहानी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा और जयपाल यादव। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ

0: इसरो कॉलोनी सानावाद से मोहम्मद सादिक, मुस्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकामा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गोण और मोहम्मद शदाब खत्री। जामा मस्जिद रोड गंगोवा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। तो आप सबों की पसंद पर पेश है ये गीत।
1: मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे। हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो

और श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में हम सुनवा रहे हैं बरसात फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। रमेश शास्त्री की रचना है और शंकर जयकिशन का संगीत, और इसे सुनना चाहते हैं जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल, और पदमा टॉकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। मोहल्ला लोहार के निम सासाराम से हमारे श्रोता हैं दिल नवाज अंसारी और लोकेश कुमार साहू, और इसी गाने को सुनना चाहा है दिनारा से हमारे श्रोता जयराम सिंह ने भी। तो चलिए, आप सबों के लिए हम पेश कर रहे हैं बरसात फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओ, इस गाने के साथ ही आज का ई मन पसंद कार्यक्रम अब समाप्त होता है। दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त लाल बहादुर को। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। यह आकाशवाणी सासाराम है। अब हम कुछ ही पलों में दिल्ली से रिले करेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे

0: के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची, कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: VBG रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में VBG रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, VBG रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एक रूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के ITR में घोषित औसत आय को सामान्यतः

0: संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में

0: आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
1: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व

0: यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर सौरभ। इसमें हम सुनवा रहे हैं शाहिद परवेज का सितार वादन। तबला संगति है विजय घाटे की। तो आइए सुनते हैं शाहिद परवेज का सितार पर बजाया राग पुरिया धनश्री।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरसौर में आप सुन रहे थे शाहिद परवेज का सितार पर बजाया राग पुरिया धनश्री। तबला संगति थी विजय घाटे की और मध्यलय तीन ताल में निबद्ध था। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे थोड़ी देर में विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी मां।

सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई, आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग। आरंभ में हम सुना रहे हैं प्यार की नई किताब एल्बम से आबिर मुखर्जी की आवाज में ये रचना।

आबिर मुखर्जी की आवाज में आप सुन रहे थे राजन लालपुरी की रचना। एल्बम था प्यार की नई किताब। अब हम सुन रहे हैं अखिलेश कुमार की आवाज में उन्हीं की रचना। एल्बम का नाम है मदमस्त नैना।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी सासाराम से आप सुन रहे हैं रसरंग कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी एल्बम सॉन्ग्स। अब लीजिए सुनिए मधुरा भट्टाचार्य की आवाज में कवि संजय सिंह की ये रचना

भीगी रातों में एल्बम से अभी आप सुन रहे थे आमिर शेख की आवाज में जाकिर सदानी की ये रचना। और अब कार्यक्रम के अंत में हम सुन रहे हैं शबनम मजीद की आवाज में एसएम सादिक की ये रचना। एल्बम है अच्छा सिला दिया।

और इसी के साथ रसरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। हमारे केंद्र से अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट तराने। श्रद्धा चित्रपट तराने कार्यक्रम में आज हम सुना रहे हैं कुछ बरसाती फिल्मी गीत।

कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा रहे हैं सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाजों में प्यासा सावन फिल्म से। संतोष आनंद ने गीत को लिखा है और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे प्यासा सावन फिल्म से ये गीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं चित्रपट तारने कार्यक्रम में बरसाती फिल्मी गीत। अब लीजिए सुनिए मुकेश की आवाज में सबक फिल्म से ये गीत। गीत लिखा है सावन कुमार ने और संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

चित्रपट तारने कार्यक्रम में अब हम सुन रहे हैं चिराग फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। गीतकार है मजरूह और संगीतकार मदन मोहन।

काला बाजार फिल्म से अभी आप सुन रहे थे गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत। बोल थे शैलेंद्र के और संगीत एसडी बर्मन का। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी सासाराम और सुन रहे हैं चित्रपट तारने कार्यक्रम में बरसाती फिल्मी गीत। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए बरसात फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

और इसी के साथ चित्रपट तारणी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, चित्रपट तारणी कार्यक्रम में आज आपने सुना बरसाती फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं कल हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

कल सुबह 7:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा नमस्ते रोहतास। सुबह 8 दिल्ली से रिले होंगे समाचार प्रभात और 8:20 पर सुनिएगा पत्र आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी।

कल सुबह 8:45 पर पटना केंद्र से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार। सुबह 9:10 से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका, और सुबह 9:30 पर और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती का कार्यक्रम आज के फनकार।

कल सुबह 10:30 सुनिएगा लोकमादरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम से कुछ लोकगीत और 10:45 पर रसधार कार्यक्रम में सुनिएगा भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। 11:00 से आप सुनेंगे लोकमादरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम लोकगीत और 11:25 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। हमारी शाम की सभा में 5:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदन। 5:30 युवा साथी कार्यक्रम सुनेंगे योवाणी और 6:05 पर पटना केंद्र से हम रिले करेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

ग्यारह बजे से आप सुनेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम लोकगीत, और 11:25 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। हमारी शाम की सभा में 5:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा वंदन। 5:30 युवा साथी कार्यक्रम सुनेंगे योवाणी, और 6:05 पर पटना केंद्र से हम रिले करेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन। कल 6:10 पर किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रसारित होगा किसान वाणी। इसमें एक भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी, विषय होगा खेती में जाने से पूर्व कृषि यंत्रों की देखभाल। विषय पर एक भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी, भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर विकास सिंह, और इनसे भेंट करेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। 6:40 पर भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सांझ गीत, और 7:15 पर हमारा सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम होगा गुड इवनिंग रोहतास। शाम 7:30 प्रादेशिक समाचार, और उसके बाद जिले के हलचल हम रिले करेंगे पटना केंद्र से। 7:50 से आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। 9:45 समाचार संध्या हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। 9:00 से सुनेंगे आप भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कल 9:15 गजलों का कार्यक्रम होगा महफिल, और 10:00 से आप सुनेंगे कार्यक्रम रसरंग। 10:30 पर कार्यक्रम होगा चित्रपट तराने। 11:00 हिंदी में समाचार, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। और 11:10 पर हमारी सभा समाप्त होगी। तभी आप सुन रहे थे कल के कार्यक्रमों का विवरण। यह आकाशवाणी सासाराम है। अब आप सुनेंगे कुछ ही पलों में दिल्ली से रिले समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: छह लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कवरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ. मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम

0: के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH 148AE, connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the cabinet also approved the construction of the 117.7 kilometer long Kanpur-Kaburai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen or Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister that will further deepen India-Japan special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he's delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through